0: ये है लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam live in the UK.
6: Dil diya galla karange na.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner Leica Radio.
7: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.

हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाई हैं। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों मैं कह ना कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर। कथना कथिना आवे तोट, कत कत कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच।

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना

वै मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म से तीस

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए,

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

आद अनाहत जुग जुग एकोवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर जोर ना जीवन मरण नहीं जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पक

0: है
1: लाइका गोल्ड।
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: लंदन दिस 20th जून बॉलीवुड की पावर हाउस वॉइस भूमि त्रिवेदी आ रही है लाइव इन लंदन।
5: राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे।
4: गेट रेडी फॉर वन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक डांस एंड फुल ऑन एनर्जी।
5: उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी।
4: प्रेजेंटेड बाय वन वर्ल्ड इवेंट्स एंड SR इवेंट्स एट क्रिस्टल ग्रैंड फ्लाव 6 PM टू 11 PM। बुक नाउ एट srevents.com। भूमि त्रिवेदी लाइव इन लंदन एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dhol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
14: लाइका रेडियो फाइनलिस्ट एट द रेडियो एकेडमी आरियाज 2026।

0: लाइका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
3: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट

0: पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
0: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
5: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
6: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
6: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
5: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
6: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
8: 25? Seriously?
7: Sounds like Ojo time.
8: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
7: Sorry about the wait. How can I help?
8: You can help me celebrate. I won!
9: Feel the fun. Play Ojo.
10: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
11: Leica Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan. Gold Breakfast with Kajal. Like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: होशियार।
1: गुड मॉर्निंग। एक और सप्ताह की शुरुआत संगीत के साथ, मनोरंजन के साथ। सोमवार वर्ष 2026 के मई महीने की 18 तारीख और मैं रवि शर्मा एक और मनोरंजन प्रोग्राम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हो गया हूँ। हर भाइयों, अब से लेकर दोपहर बाद एक बजे तक कहीं ना जाइयो, जुड़ जाइए अपने लोकप्रिय रेडियो स्टेशन के साथ, लाइका रेडियो नेटवर्क पर, लाइका गोल्ड। चमकने को है धूप खुशियों की हर सू, सुना है कि मौसम सुहाना रहेगा, हंसी लुत्फ लेने जो गर्मी का निकले, नजर सेकने का बहाना रहेगा। हुई मेरी खातिर सदा जूतियों से, मेरे भाग्य में मार खाना रहेगा। जवां जब तलक है, जवानी है जब तक, पुलिस स्टेशन भी आना जाना रहेगा। वही न रह पाएगा आज महफिल में कोई, रहेगा तो हंसना और हंसाना रहेगा, ठहाके लगाना रहेगा। जिंदगी बहुत छोटी है बहनों भाइयों, इसके एक एक पल का लुत्फ उठाना रहेगा। ये जिंदगी बारंबार नहीं, दुनिया के मजे लूटेंगे हम, खेलें कूदें, हंसे मुस्कुराएं, खुशियां बांटे, और कोई बात ना पूछेंगे।
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. This is Leica Gold. Non-stop classics.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, थोड़ी बहुत भाई मुश्किलों का भी होगा आना जाना, उबड़ खाबड़ रास्ते को वहां से भी हमें गुजर कर है जाना, लेकिन हंसते मुस्कुराते हुए, मस्ती लुटाते हुए हमारे साथ जुड़ जाइए।

0: आज को जुनली रात। मगर बंगाली शब्दों का समावेश जब गीतों में होता है तो ध्यान जाता है ना बंगाल की ओर। कई गीत ऐसे हैं जो हमें किसी प्रदेश की ओर, किसी लोक परंपरा की ओर खींच कर ले जाते हैं। एक और गीत है ऐसा ही, वो मेरे ढोलना, उसमें भी बंगाली टच है और पंजाबी टच तो साहब पूछो मत। हर गीत में कई हर फिल्म में कोई ना कोई, अगर आनंद बख्शी के लिखे गीत होंगे तो पंजाबी टच अपने आप आ जाएगा उनमें। साहब पहला गीत आज के कार्यक्रम में जो शामिल हुआ वो था नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज़ों में, साथियों के साथ गा रहे थे खून भरी मांग, फिल्म का गीत, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन चलता रहे, वही कामना थी। और अभी जो गीत आपने सुना दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म तलाश, आवाज़ें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। तो भाई ऐसे बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए हम प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं और फिर आपके सामने लाकर धरते हैं पाउंड का रेट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो नोट कीजिए साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, रेट अभी बुरा नहीं है अगर आप लोगों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो। भाई भारतीय करेंसी में वो एक पाउंड के बदले 127.50 रुपये दे रहे हैं मैक्सिमम, दैट्स 127.5 रुपीज मैक्सिमम। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: ये है लाइका गोल्ड।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और मोहम्मद रफी व आशा भोसले की आवाज में भी अभी आपने सुना फिल्म राम और शाम का गीत, बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते। गीत में आपने थोड़ा सा वो फोक टच महसूस किया, जरूर किया होगा, पर नौशाद साहब की बनाई धुनों में शुद्ध भारतीय टच होता है और उसमें भी लोक परंपरा से जुड़ी धुनें जो हैं वो बनाते रहे। और उनका ये मानना था कि हमें विदेशों से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब अपने ही पास खजाने बहुत हैं। मेरे साथ एक बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा था ये कि हमें बाहर की ओर नहीं देखना चाहिए, हमारे पास इतना कुछ है कि हम दे सकते हैं, लेने की आवश्यकता नहीं है, खासकर संगीत के क्षेत्र में। नौशाद साहब को याद किया भाई उनकी इस धुन को सुनवाते हुए, राम और शाम फिल्म का गीत। और अब 10:30 बजे चाहते हैं, समय हो गया है आज के प्रमुख समाचारों का। मैं खबरों में, यहां ब्रिटेन में चर्चा चल रही है कि बच्चों के दुर्व्यवहार के लिए उनके माता पिता को भी जिम्मेदार अब ठहराया जाएगा। माता पिता बच्चों को प्यार दें, संस्कार दें और अच्छा व्यवहार दें, क्योंकि बाहर अगर वो क्राइम्स या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, शरारतें करते, तोड़ फोड़ या किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस होते हैं, तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी माता पिता की भी बनती है, ये चर्चा हो रही है। और इसके अलावा भाई प्रधानमंत्री स्टार्मर के सहयोगी कह रहे हैं, कुछ खास जो उनके सपोर्टर वो कह रहे हैं कि उन्हें बदलने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि वो काम ठीक कर रहे हैं। और जो है ब्रिटेन में इस समय सरकार अपनी जिम्मेदारियों को खूबसूरती से निभा रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री को बदलना ठीक नहीं है। लेकिन भाई उनके विरुद्ध भी कुछ स्वर जो है उभरे थे, वो देखते हैं धीरे धीरे शांत होते हैं या और मुखर होते हैं। इसके अलावा भाई इंटरनेशनल समाचारों में जो खबरें आ रही हैं, लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी हैव।
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के फॉर्मर कमांडर मोहसिन रेजाई ने अमेरिकी नाकाबंदी को दुनिया के देशों के लिए नुकसानदायक बताया है। मोहसिन रेजाई ने कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी जितनी लंबी चलेगी उतना ही दुनिया के देशों को नुकसान होगा। मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा कि हमारी टॉलरेंस की भी एक सीमा है, एक हद है, और हथियारबंद बल खुद को तैयार कर रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट व्यापार के लिए खुला है लेकिन फौजी कार्रवाइयों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि अमेरिका पूरी तरह फंसा हुआ है, एक तरफ वो लड़ना चाहता है और अगले 2-3 दिनों में मैदान में उतर भी सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी फौज ट्रंप से कह रही है कि ऐसा करने से अमेरिकी फौजी पकड़े जा सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीज फायर तोड़ने की धमकियां दी हैं। सऊदी अरब ने बताया है कि उसने संडे को अपने हवाई इलाके में दाखिल हुए 3 ड्रोन तबाह कर दिए हैं। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक्स पर बयान जारी करके बताया है कि 17 मई को 3 ड्रोन नष्ट किए गए और ये ड्रोन इराकी हवाई इलाके से होकर सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए थे। डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल अल मालिकी ने कहा कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री सही समय और सही जगह पर जवाब देने का हक रखती है, देश के खिलाफ किसी भी कोशिश पर जरूरी कदम उठाया जाएगा। भारत से आने वाली खबरों में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने केरल के चीफ मिनिस्टर के पद की शपथ ले ली है। अब 20 एमएलए यानी विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में हो रहा है, जहां पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। इनके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे हुए हैं। वी डी सतीशन 6 बार के विधायक हैं, एमएलए रह चुके हैं और केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका यानी रोल भी निभा चुके हैं। बिहार से एक खबर आ रही है, वहां सासाराम रेलवे स्टेशन पर आज सुबह पटना जाने वाली रेलगाड़ी की एक बोगी में अचानक आग लग गई। इस घटना में किसी भी यात्री के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र के मुताबिक घटना के वक्त ट्रेन खाली थी, इसलिए जान का नुकसान तो नहीं हुआ, हां ट्रेन में आग की कई जो बोगियां हैं वो तबाह हो गई। अमेरिका से खबर आ रही है, वहां के एक एयर शो के दौरान दो फाइटर प्लेन आपस में टकरा गए, जिस पर ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी कौंसलेट ने घटना का वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा है कि अमेरिकी फौज ऐसे बेकार के ऑपरेशन में ही जीत सकती है, किसी असल लड़ाई में उसकी जीत नहीं हो सकती। दरअसल अमेरिका में यह हादसा संडे को हुआ, यहां एक एयर शो के दौरान EA-18G जेट आपस में टकरा गए, जिसके बाद चार क्रू मेंबर्स पैराशूट के जरिए तुरंत सुरक्षित बाहर आ गए। अमेरिकी नेवी का कहना है कि जो जेट्स टकराए उनकी कीमत लगभग $7 करोड़ यानी लगभग 672 करोड़ रुपए थी। यूक्रेन ने संडे की रात को रूस की राजधानी मॉस्को पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं। रूसी अधिकारियों ने बताया है कि हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। रूसी समाचार एजेंसी का कहना है कि बीते एक साल की अवधि में पीरियड में यह मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला था। भारत के मॉस्को स्थित दूतावास ने यानी एम्बेसी ने बताया कि मरने वालों में एक भारतीय नागरिक भी था और 3 जख्मी होने वाले भारतीय थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है। यह ऑनर स्वीडन का सबसे बड़ा सम्मान है जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख को दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर में संडे को ये सम्मान दिया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां इंटरनेशनल अवार्ड है, सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान के दौरान स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन समेत कई नेता वहां मौजूद थे। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक संघर्ष परमानेंटली रुका नहीं है। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। जंग खत्म करने की बातचीत अटक जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर वार्निंग दी है और कहा है कि घड़ी की सुई तेजी से घूम रही है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के ताजा प्रस्तावों पर कोई कदम नहीं उठाया है। बीते हफ्ते ईरान ने अमेरिकी मांगों को खारिज कर दिया था, तभी ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि युद्ध विराम लाइफ सपोर्ट पर है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: DJ साहब, tasty track हाजिर है, स्वाद लीजिए। लौट आइए संगीत के क्षेत्र में, या यूं कहिए म्यूजिकल ढाबे पर आ जाइए और स्वाद चखिए इस मधुर संगीत का। गुड मॉर्निंग।

0: सोनू निगम मधुर आवाज प्रभावशाली जो है प्रस्तुतिकरण सोनू जब भाई इनको साथ मंच साझा किया मैंने गुड़गांव में। आपको बता दें कि सोनू निगम भी मेरे ही प्रदेश यानी हरियाणा से संबंध रखते हैं और इसलिए हरियाणा सरकार ने इन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया, मुझे लंदन से बुलाया और हम दोनों एक ही होटल में ठहरे हुए थे। उसी होटल में ठहरे हुए थे भाई एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन से देश के, वो कौन सा देश है वहाँ, महेंद्र चौधरी उनका नाम है, वो भी हरियाणा से थे भाई और वेस्ट इंडीज़ में एक किसी छोटे से कंट्री के वो थे प्रधानमंत्री थोड़े समय के लिए, उन्हें भी सम्मानित किया गया। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था और बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन था गुड़गांव में, बहुत ब्यूटीफुल थिएटर में। खैर साहब, सोनू निगम को हमने याद किया और अब याद करते हैं एक बार फिर से कि पाउंड का, पैसे का, धन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड। करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि भाई जब रेट अच्छे चल रहे हो तो अपनों को भेज दिया जाए और जब भाई रेट डाउन हो तो अपने लिए भी अपना ख्याल पहले रखें। आज का ये लेमफाई का जो रेट चल रहा है पाउंड का, नोट कीजिए, विभिन्न करेंसीज में दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी फॉर वन पाउंड 128.79 रुपीस, 128 रुपए 79 पैसे। पाकिस्तानी 372.56, श्रीलंकन 436.58, बांग्लादेशी टका 164.2, अफगानी 85.119।
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Aur lijiye saab, gold rate bata do aapko. The gold is trading at the rate of 109.35 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो साहब आज IPL में कौन सा मैच खेला जा रहा है? वेल भाई 74 मैचेस का आज 63rd मैच विल बी प्लेड इन चेन्नई, और चेन्नई में एक तो चेन्नई सुपर किंग है, उनके साथ मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद का। साउथ की भाई दो टीमें भिड़ेंगी आपस में आज और मुकाबला दिलचस्प रहेगा। स्कोर के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होंगे, सुनते रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
2: ये है लाइका गोल्ड।
4: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश।

0: पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
4: तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
7: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र शीघ्र।
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 02085145400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
8: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
14: प्रेम पास्ट अने फ्यूचर वच्चे अटकायलू एक दिल
15: ने शू लागे छे। हूँ यहाँ साचे वेडिंग प्लान करवा
14: वहाँ की चुकी लव स्टोरी स्टारिंग पूजा जोशी, परीक्षित तामलिया, भाविन भानुशाली, मिलोनी जॉनसा, अ फिल्म बाय ध्वनि गौतम, रिलीजिंग ऑन 15th में।
16: आ फैमिली वाली फीलिंग ने मैं त्या बहुत मिस करी छे।
17: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
18: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
19: घड़ी की सुई चली है खबरों की ओर, मिलवाने हमें दुनिया भर के समाचारों से, ये गीत हमें खबरों तक ले जाएगा। लता जी एंड किशोर दास।

बहुत खुशी होती है। लीजिए सुनिए आज का चिंतन, जिसके लिए आलेख हमें किशन पहलवान और राजू मलिक ने भिजवाया है। और वेस्टर्न से आया है आज का विचार, तो प्रस्तुत है थॉट फॉर द डे, आज का चिंतन।

एक संत अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, अपने चेलों के साथ। गुरुजी उन्हें समझा रहे थे, जीना सिखा रहे थे। कहते थे कि भाई आज प्रसाद में हमारे पास सिर्फ रोटियां हैं, कोई सब्जी नहीं है, कोई अचार चटनी नहीं है, सादा भोजन है, तो आप इसे ही खा लो। गुरुजी सिर्फ रोटियां? एक शिष्य ने प्रश्न किया। हाँ, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। भाई भाग्य की बात है, कभी कभी प्रसाद में स्वादिष्ट भोजन भी मिल जाता था। ये तो गांव वाले आकर के जो कुछ दान करके जाते, दे के जाते, उसी से आश्रम का जो है वो रसोई घर चलता था। आज सिर्फ रोटियां और वो भी सूखी हैं, क्या गुरुजी ऐसे कैसे खाएं? एक जब शिष्य ने प्रश्न किया तो गुरुजी ने कहा, ऐसा करो, रोटी का टुकड़ा तोड़ो और मान लो कि रोटी पर नमक रखा है, बस उसे लगाओ और खाना शुरू करो। आंखें बंद करके महसूस करो कि रोटी में नमक लगा हुआ है, वो और स्वादिष्ट हो जाएगी। एक लड़के ने देखा, टुकड़ा तोड़ा, आंखें बंद की और खाना का रोटी का टुकड़ा निवाला लेते हुए कहता है, वाह गुरुजी वाह, बड़ी स्वाद रोटी है, नमकीन रोटी। बाकी सभी शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। मान लो कि रोटी पे नमक रखा है, बहुत सारी बातें हम मान लेते हैं, फिर के अनुसार जीवन का स्वाद लेते हैं। लेकिन एक लड़का एक तरफ बैठा रहा, उसने अभी रोटी खाना शुरू नहीं किया। गुरुजी ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें ये स्वादिष्ट रोटी नहीं खानी है? खानी है गुरुजी, तो फिर मान लो कि रोटी पर नमक रखा है, एक टुकड़ा तोड़ो, उस नमक से रोटी लगाओ, टुकड़ा लगाओ और निवाला मुंह में रखते हुए आंखें बंद कर लो, कल्पना करो, तस्वर में स्वाद लो। शिष्य ने कहा, गुरुजी एक बात कहूं, रोटी पर नमक तो है नहीं, अब मानना ही है। जब मानना ही है तो फिर नमक क्यों मानूं, मैं मटर पनीर क्यों ना मानूं, मैं दाल मखनी क्यों ना मानूं, जब है तो कुछ भी नहीं। लेकिन कल्पना तो कम से कम अच्छी करूं, स्वादिष्ट, मजा आ जाएगा। गुरुजी मुस्कुराए, सभी बच्चों से कहा, देखा, बात सुनने की नहीं सीखने की भी है। अरे जब मानना ही है, कल्पना ही करनी है, तो छोटी क्यों करते हो, बड़ी करो, अच्छी करो। इससे पहले एक शिष्य ने सवाल किया था कि गुरुजी मेरा मन जो है वो विकारों की ओर भटकता है, घटिया बातों की तरफ जाता है, विषयों में उलझता है। गुरुजी ने कहा, मारो लात उस मन को, कहो जा खा धक्के। अरे अगर तुझे जाना ही है तो अच्छी जगह पे जा, सोचना ही है तो अच्छी सोच रख, गुनगुनाना है तो अच्छे गीत गा। हाँ बहनों भाइयों, आपकी जैसी कल्पना होगी, आपकी जैसी सोच होगी, आपका जैसा मन होगा ना, वैसा ही आपका जीवन होगा। तो मन में अच्छी बातों को जगह दें, या मन से कहें, ऐ मन मेरे तू, सांझ सवेरे तू सिमरण किया कर, जरूर अच्छी बातें सोचा कर, अच्छी कल्पना किया कर, अच्छी जगह जाया कर।

0: रे मना, ले चल मुझे वहाँ जहाँ सात्विकता हो, जहाँ ईश्वर की अनुभूति हो, जहाँ आनंद हो, जहाँ प्रेम हो।
1: चिंतन,
0: ये था आज का चिंतन, आज का विचार, थॉट फॉर द डे। और आप जानना चाहेंगे कि भाई जो गीत सुनवाया वो कहाँ से लिया? वेल, दैट वाज बाय कुमार विशु। संगीत बद उन्होंने किया, आवाज भी उनकी थी, लिखा था रंजीत सिंह आफताब ने। और ये तो मैं भाई कई बार बता चुका हूँ कि कुमार विशु मेरे सहपाठी रहे हैं यूनिवर्सिटी में। हम दोनों सांझे मंच पर, मैं अभिनय करता था तो वो गाते थे, कई शो हमने साथ साथ किए थे। हम एक ही विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, MD यूनिवर्सिटी रोहतक। थोड़ा समय मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी गुजारा और वहाँ के तो भाई स्टूडेंट्स में नाम शामिल है गजल गायक जगजीत सिंह जी का। वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे लेकिन वो मेरे सीनियर थे, मेरे साथ नहीं थे, मैं उनसे बहुत जूनियर था उस क्लास में, वहाँ उस स्टडी करते हुए। तो साहब आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें राजू मलिक और कृष्ण सोलंकी शंभू ने भिजवाया स्टेन से। कहते हैं जी अब हम स्टेन में नहीं, हम अब विंडसर में हैं। भाई आपका बिजनेस तो वही है ना, आपका कारोबार और आपके ये उत्तम विचार जो कभी कभी आप चिंतन में शामिल करवाते हैं, इनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, याद दिला दूं, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन भी भाई बहुत बढ़िया कह रहे हैं फतेह पटेल वुल्वरहैम्पटन से। और आप हैं कंचन अग्निहोत्री, आपको भी चिंतन पसंद आया, आपने भी संदेश भिजवाया, थैंक यू वेरी मच। वत्सला जी, मीरा के मोहन अवश्य मिलेंगे, शबरी के राम भी मिलेंगे, क्या बात है। तो आप का भी संदेश आया है चिंतन की प्रशंसा में, थैंक यू वत्सला जी। और भरत गंगाराम जगदीश जी बुशी से, जैस्मीन बाबा जी के दर्शन करवा दिए आपने, थैंक यू। और नलिनी, आपका पैगाम चिंतन के नाम, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कहती बिल्कुल सही कहा आपने, जब सोचना ही है, मानना ही है, कल्पना ही करनी है तो अच्छी करें। मानसी थैंक यू, पम्मी स्लाव में, रागिनी महेंद्र बजारिया साउथरो में, सुनीता शर्मा थैंक यू, हरविंदर जी रेगुलर लिसनर, महेंद्र पटेल क्रोडन वाले, नीला चौधरी जी आपका भी साथ निरंतर है, चिंतन होता है और आपका संदेश सामने स्क्रीन पर होता है। हिना उल्लास टोरंटो में, एजाज चैशम में, शौकत हुसैन भाई कैसे हैं आप? कहते हैं आज मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं भाई, रोज सुना करो, थैंक यू, हम मिस करते हैं आपको शौकत भाई। रंजन जी थैंक यू, हंसा बोरा, मृदु तमे सांभळो छो, गुड मॉर्निंग। मधु सुन रही हैं हमें, इमरान सुन रहे हैं, अरुणा जी थैंक यू वेरी मच। और भारत में आप कौन हैं? भारत से आया है हितेश पटेल का पैगाम। भाई हितेश आप भी जुड़े रहते हैं हमारे कार्यक्रमों के साथ। देखिए हम किसी के काम में रुकावट नहीं बनते हैं, सहायक बनते हैं, इसलिए आप काम कुछ भी कर रहे हो बस साथ साथ रेडियो सुनते रहें, हम आपकी स्फूर्ति को और बढ़ाएंगे, आपकी एनर्जी को और जागरूक करेंगे। अनिल सोनी हमें वियाना में सुनते हैं, नैना शाह यहाँ लंदन में सुनती हैं, और आप कहाँ सुनते हैं जी? वजाहत हाशमी भाई कैसे हैं आप? साथ जुड़े हमारे थैंक यू वेरी मच। और बहन भाइयों जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सबका धन्यवाद करते हुए और लोगों को भी जोड़ें ये रिक्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का चिंतन, आज का विचार अब समेटते हैं, चिंतन समाप्त होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: नोट कीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ताजा रेट भाई, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 128 1.2 रुपीज, 128 रुपए और 20 पैसे का रेट चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगर आप पैसे हिंदुस्तान भिजवाना चाहें तो भाई भेजने के लिए यू कैन सेंड वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट SBIUK.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: ये है
1: Like a Gold।
3: Like a Gold।

0: आजकल याद कुछ और रहता नहीं, उम्र का तकाजा है भाई। होता है ऐसा। आप मेरी तरफ शक की नजर से ना देखें, होता है, सभी को होता है भाई ऐसा। अब आप पूछेंगे भी आपके साथ क्या हुआ, कितनी देर तक मैं अपना चश्मा ढूंढता रहा। चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि नहीं, मेरा मतलब है कि भाई गाड़ी चलाते हुए चश्मे की जरूरत पड़ती है, वैसे नहीं, पढ़ने के लिए नहीं जरूरत पड़ती। अब मैं कितनी देर से चश्मा ढूंढ रहा हूँ, घर में चश्मा नहीं मिल रहा है। अगर फिर पत्नी को भी लगा दिया तलाश करने पर, फिर जब पत्नी के सामने आया तो कहती है, जी शर्म करो, चश्मा ढूंढ रहे हो, आपने चश्मा आंखों से ऊपर कर लिया है, माथे पर लगा रखा है। क्या कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ में चाबी हो और आप चाबी तलाश कर रहे हो, कहाँ है चाबी, कहाँ है चाबी? अरे उंगली में झूल रही है, आपके साथ घूम रही है चाबी, लेकिन चाबी की तलाश जारी है। ऐसा होता है। और कभी कभी आपके सामने चीज रखी होती है और आपको सूझती नहीं, नजर आती नहीं, और आप परेशान तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई काले रंग की टेबल हो और उस पर काले रंग का आपने कोई गुच्छा रख दिया, कोई पर्स रख दिया, कोई ऐसी चीज रख दी, वो कभी कभी मिक्सअप हो जाता है। लेकिन ऐसी उलझन आजकल याद कुछ रहता नहीं। बस एक आपकी याद आने के बाद आप आ जाइए, मेरी चीज ढूंढवा दीजिए, उसके बाद जाइए जहां मर्जी।
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. This is the Leica Radio network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर सुपरहिट गीतों के भाई प्रदाता रहे हैं दोनों। और ये गीत था फिल्म प्यार का मौसम से। प्यार का मौसम आया जब जब ये गीत सुनवाया। स्टाइल से लगता है संगीत जरूर पंचमदा का यानी आरडी बर्मन साहब का रहा होगा। भाई सामने नहीं लिखा है, अंदाजे से बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि आरडी बर्मन का संगीत है। रफी साहब और लता जी की आवाजें हैं। प्यार का मौसम फिल्म का गीत आपने सुना और किसने सुनवाया?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a extra podcast update.
0: और भाई एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पर जो है लाइका एक्स्ट्रा पर हमारा नया एपिसोड जो है आजकल लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं। दिस इज इंडिया वीक शोकेस होस्टेड बाय अनुज राडिया और टॉकिंग पॉइंट्स जो है उसके कई ऐसे हैं यानी आप तक पहुंचाने के लिए संदेश के लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम 26th to 31st May। तो पहले हमारा ये एपिसोड देखिएगा एपिसोड 16 और उसके बाद भाई इंडिया वीक के भी हिस्से बनिएगा। जो हमारे पिछले एपिसोड्स हैं वो भी वहाँ पर उपलब्ध हैं। वेडिंग्स एंड बियॉन्ड, होम स्कूलिंग डिबेट, विल्सन प्रोबेट, यू कैन वॉच देम। और भाई ये अवेलेबल हैं ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, यू कैन सी देम।
4: Like extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Like a gold.
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Watford mein dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
8: Then come to Godfather & Company. Vivek House, Bar & Kitchen.
9: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala to biryani, fresh breads and refreshing drinks.
8: Har bite mein lajawab flavors. Aur vibe, bilkul premium.
9: Friends, family ya special night out. Make it memorable.
8: Godfather. Father and Company. Taste the legacy, live the moment.
9: Visit Vivek House, Watford. Call 073-00-99-8823.
8: Book your table today. London, this 20th June, Bollywood ki powerhouse voice, Bhumi Trivedi, aa rahi hai live in London.
10: Ram chahe, Leela chahe, Leela chahe.
8: Get ready for one unforgettable night of music, dance and full-on energy.
10: Udi, udi, ja.
8: Presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough, 6 p.m. to 11 p.m. Book now at srevents.com. Bhumi Trivedi live in London. Exclusive radio partner, Laika Radio.
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
13: London, good news! आपका फेवरेट आईटेक अब TRS Cash and Carry South Hall में। Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
14: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
15: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
16: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
14: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
15: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
17: Feel the fun. PlayOjo.
18: 18 plus, gamble aware.
19: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan.
20: Like a gold. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे
21: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: और लीजिए साहब इन्हें सुनिए, कुछ आर्टिस्ट जो है वो बहुत टॉप के सिंगर होते हैं और कुछ सिंगर होने के साथ साथ टॉप के परफॉर्मर भी होते हैं। मतलब वो भाई वो भाव भंगिमाएं आत्माओं कुछ ऐसे चलाते हैं, कुछ जोक वोक बीच में शामिल करके गीतों के साथ दिल बहलाने में भी अपना खूब क्या कहते हैं भाई लोहा मनवाते हैं। ऐसे ही गायक कलाकार थे किशोरदा। किशोरदा कुछ गाएंगे, मेरे श्रोताओं का दिल बहलाएंगे।
22: मैं

0: जब दिल से दिल मिल जाएगा। पागल कौन होता है भाई? एक महात्मा कहते हैं, भाई शर्मा जी पागल वो बंदा हैगा जिन्हें गल नू पा लिया हैगा। क्या बात भाई, गल बात को जो समझ गया है, जो अपने आप में मस्त रहता है, तंदुरुस्त रहता है, जबरदस्त रहता है, वो पागल किसी की परवाह नहीं करता है। मस्त राम मुर्दों से पूछे, कब्रिस्तान में जाके मस्त राम मुर्दों से पूछे, मुर्दो कुछ बतलाओगे? तो झट उठकर एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Leica Radio. Currency updates are sponsored by Lemfi Mobile App. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और लीजिए साहब, आपको मैं रेट्स बता देता हूँ लम्फाई के। अगर आप पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फॉर वन पाउंड एट दिस मोमेंट दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.66 रुपीस, पाकिस्तानी 372.24, श्रीलंकन 439.51, बांग्लादेशी टकाज 164.09 एंड अफगान अफगानी 85.05।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download Lemfi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And the gold is trading at the rate of 109.36 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: IPL 2026 भाई, टाटा IPL के मुकाबले जो है बड़े दिलचस्प दौर से गुजर रहे हैं। और कल का मैच देखा आपने, राजस्थान रॉयल वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, और भाई दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने भी कमाल किया और गेंदबाजों ने भी। कल एक ही ओवर में 3 विकेट लेने का श्रेय उनके गेंदबाज को हासिल हुआ, तो भाई रन बनाने में भी मशीन बन गए थे बैट्समैन। और इस तरह से अक्षर पटेल की टीम को विजय मिली, देर से मिली, लेकिन तो भाई कल उन्होंने 4 गेंदों के रहते 5 विकेट से राजस्थान रॉयल्स को हराया। आज मुकाबला नोट कीजिए, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला जिस तरह से हुआ है, ऐसा ही ज़बरदस्त आज क्या कहते हैं मुकाबला होगा, भिड़ंत होगी। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, दोपहर बाद 3 बजे मैच शुरू होगा और स्कोर के आंकड़े हम बताएंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
3: Leica Gold.
4: ICICI Bank Money to India, which is trusted by millions across 16 countries, is now in the UK.
3: Wow! So, sending money to India is instant?
4: Yes, from any bank in the UK to any bank in India. Real-time exchange rates, round-the-clock support. Not only this, we also get a preferential rate and zero fees on our first 5 transfers.
3: Download ICICI Bank's Money to India UK app today from the Play Store or App Store. ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA. Terms and conditions apply.
5: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
6: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
5: Call today on 01923 883 100
6: or go to skylordcruiseandholidays.com.
5: Book with confidence.
6: We're atoll protected.
7: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code Leica10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
10: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
10: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
11: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
12: T's and C's apply.
13: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
14: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
13: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
14: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
15: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
16: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
17: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
16: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
17: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
16: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
17: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર્સ સાથે.
16: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
17: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
18: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
0: और लीजिए साहब, ये गीत हमें लेकर के चलेगा 12 बजे की खबरों तक.

0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम भाई। प्राइम मिनिस्टर की टॉप टीम का एक सदस्य कह रहे हैं कि उनके लिए रिजाइन करने का कोई टाइम टेबल सेट नहीं है, पर उन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। लेट्स फाइंड
1: अक्रॉस ग्रेटर लंदन, दिस इज लाइक अ गोल्ड 10:35 AM DAB एंड ऑनलाइन, अ पार्ट ऑफ द लाइक अ रेडियो नेटवर्क।
2: The top stories this hour. One of the Prime Minister's top team insists there'll be no timetable for him to resign.
3: Keir Starmer remains the most resilient person I know in my life. He has a strength of character, a fighting experience. There will be no timetables. What there is getting on with the business of government.
2: Deputy PM David Lammy insists Sir Keir Starmer will not step down. His potential leadership rivals have clashed over Brexit. Former Health Secretary Wes Streeting signalled he'd stand in any contest and wants Britain to return to the EU. Andy Burnham, who hopes to stand in the Makerfield by-election, has insisted he's not campaigning on that issue. It's understood a number of Americans have been exposed to the Ebola virus in the Democratic Republic of Congo. The World Health Organization has declared the outbreak an emergency of international concern, but have stopped short of saying it's a pandemic. It's reporting at least 80 suspected deaths and more than 240 cases. Our Africa correspondent Yusra Elbagir says the strain is proving difficult to manage.
4: This Bundi Bajau variant is not only very fatal, but it also has a slower detection time beyond the 6 to 8 hours that is expected of the Ebola virus. So you've got all these variables that make it very difficult to contain.
2: A 12-year-old boy is in a serious condition after a car crashed into pedestrians in Alloa yesterday afternoon. Four other people were injured on the A907. The MV Hondius cruise ship has docked in Rotterdam to allow the final crew off to quarantine. Three people who were on board the liner died after contracting hantavirus. Former Google boss Matt Britton has arrived for his first day as the Director General of the BBC. He says the world needs the corporation more than ever. And Ryanair insists its prices will remain broadly flat over the summer, despite uncertainties around jet fuel availability. The airline says the amount customers pay is unlikely to change drastically. From Sky News, I'm Imani Rana.
1: This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in London. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: वेरी गुड आफ्टरनून टू यू भाई। सुबह की जो थोड़ी बहुत धूप की चमक दमक थी वो बादलों से ढक जाएगी, लेकिन शाम होने से पहले फिर भी छुटपुट रूप से सूरज की किरणें धरती पर पहुंचती रहेंगी। शाम को मौसम ज़्यादा ड्राई रहेगा और सनशाइन ज़्यादा मिलेगी, और साहब रात को भी आसमान साफ रहने की ज़्यादा संभावनाएँ हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर लंदन में भी और मिडलैंड में भी आज 15 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Like a
5: gold. Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
1: gold. Let's return to the biggest hits. Back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
6: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
7: TravelHub.
6: At all protected.
1: Leica. Feel good classics all day. Leica Gold.
0: स्वागत है आपका प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर में। आइए ले चलते हैं आपको एक शादी की धूमधाम में। अरे कोई बात नहीं, घुस जाएंगे कनात उठा के। लेडीज गीत संगीत में बिजी हैं, मर्द लोग व्यवस्था कर रहे हैं, खाना वाना बन रहा है, तंबूल लगे हैं, साउंड बैग गूंज रहा है। ऐसे में कौन पूछता है कि भाई आप शादी में किस तरफ से हो, लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से? हम तो अपनी तरफ से हैं जी। थ्री इडियट्स में देखा था ना वो। आइए पहले संगीत का मजा लेते हैं फिर खाने का।

0: हम इंतजार न करते तो क्या करते, इंतजार ही करते और क्या करते भाई। जैसे प्रीतेश कर रहे हैं, कहते हैं कल आ रही हैं। कौन आ रही हैं? धर्म पत्नी आ रही हैं। अभी शादी हुई है, फरवरी में शादी हुई, और कहते हैं पहली बार लंदन तशरीफ ला रही हैं मेरी धर्म पत्नी। ए भाई प्रीतेश, उनका नाम तो लिखा नहीं आपने, और वो तो कल आ रही हैं, आज ही अनाउंसमेंट करवा रहे हो आप। अच्छा अच्छा भाई, सबको पता लग जाए बीवी आ रही है, सावधान। कल उनका नाम भी बताइए ताकि वो भी सुन सके। हाँ, उनके स्वागत में आंखें बिछा के बैठ जाना दरवाजे पे। हाँ,
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं भाई, पैसे भिजवाइए भारत। अगर अच्छा रेट चाहते हैं तो उनसे संपर्क कीजिए। टुडेज रेट इज फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 128.2 रुपीज, 128 रुपए और 20 पैसे दे रहे हैं एक पाउंड के बदले। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto twin city centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-centre city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
4: Call 01923 883 100. At all protected.
5: You know that clean, fresh feeling after brushing? Sidayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Sidayu, Ayurved that fits your life.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश। एट

0: पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड, तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
1: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदर कांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टल रोड एरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
2: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
5: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
2: शीघ्र शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
6: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
7: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
8: Ab London baithe milega Asian ethnic swad instantly, thanks to Jamin Foods.
9: Just add hot water, wait for 5 minutes and taste the ethnic recipe. Like Sabudana Khichdi, Shira, Poha, Bhaji, Veg Biryani, Dal Bhat are ready to serve on your plate.
8: Zero mess, no stress. Same ethnic taste with German foods.
10: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
11: 25? Seriously?
10: Sounds like Ojo time.
11: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
10: Sorry about the wait. How can I help?
11: You can help me celebrate. I won.
12: Feel the fun. Play Ojo.
13: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gambler aware. T's and C's apply.
14: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
15: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
16: और भाई भाइयों, आर्टिस्ट ऑफ द वीक दुनिया में नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और दावा करते हैं कि आप उन्हें चाहकर भी भुला नहीं सकते।
17: मुझे
16: शम्मी कपूर।

0: संग
1: शम्मी कपूर भाई, उनकी अदाएं, उनकी भूमिकाएं, उनके संवाद लोग याद करते हैं। एंड इस सप्ताह आप उनकी फिल्मों के बहुत सारे गीत सुन पाएंगे। ही इज द आर्टिस्ट ऑफ अ वीक।
2: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
3: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।
4: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: मेरी जान लड़क।
1: आशा भोसले और किशोर कुमार, फिल्म तीन देवियां का गीत आप सुन रहे थे उनकी आवाजों में। और भाई जब मेरी चुनरिया मलमल की तो मैं क्यों ना फिरूं झलकी झलकी। अभी पता चला कि भाई वो रिच लोगों की लिस्ट प्रकाशित हो गई है, धनवान लोगों की सूची। ये भाई रेगुलरली छपती है यहाँ और उनमें लोग मेरा नाम ढूंढ रहे हैं। मैं बता दूं कि मैंने उनको मना कर दिया था, क्योंकि क्या होता है कि नाम छपता है फिर बंदा मशहूर हो जाता है, फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं कि वो उधार मांगने वाले। नहीं, मुझसे उधार नहीं मांगने वाले, अपना उधार वापस मांगने वाले। रिच लोगों की लिस्ट में भाई नाम तो मिलता है हिंदुजाज का। और ये जो धनवान व्यक्ति होते हैं ना भाई, ईश्वर करे वो धनवान भी हो, मनवान भी हो और सुखवान भी हो, ऐसी प्रार्थना हमारी। लेकिन आम तौर पर धन जो है सुखी नहीं बनाता, संतुष्टि सुखी बनाती है।
2: फिर क्यों ना फिरूं झलकी झलकी।
0: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा
1: ओढ़ो ओढ़ो। अब मलमल की चुनरिया है तो घूंघट ओढ़ने का फायदा क्या, सब नजर आएगा देखना। झलकी झलकी घूमने दो इसे।
3: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: और भाई वो अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास कही या मल मास के कई नाम हैं, एक एक्स्ट्रा मंथ आता है भारतीय कैलेंडर में और इसी कारण वो सारा बैलेंस रहता है। भाई ये काल गणना का काम भारतीय संस्कृति में बहुत पुराना है। जैसे ये लोग हर चार साल में एक दिन एक्स्ट्रा रखते हैं ना इंग्लिश कैलेंडर वाले, और दुनिया भर के और भी कैलेंडर हैं भाई जगह जगह, लेकिन भारतीय कैलेंडर में एक अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है। उसका धार्मिक महत्व भी है और काल यानी समय की गणना के अनुसार कैलकुलेशन जो है वो उसकी बिल्कुल सही बैलेंस में रहती है। तो हर मौसम जो है वो अपने उसी महीने में आएगा, हर त्यौहार उसी महीने के आसपास जो है अंग्रेजी के हिसाब से भी आएगा। और इसलिए आपको बता दें कि आजकल अधिक मास चल रहा है, लोग उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं और ऐसे में बहुत सारे धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं कि ये पुरुषोत्तम मास सचमुच आपके लिए उत्तम साबित हो। एक और सूचना आप तक साझ पहुंचाएं भाई, लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द मिथोलॉजिकल शो हमारे राम, स्टारिंग बहुत प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा, वो रावण के रूप में आएंगे और राहुल बुचर भगवान श्री राम की भूमिका में होंगे। और ये 9 से 12 जुलाई के बीच लंदन के एवेंटिम अपोलो में प्रदर्शित किया जाएगा ये नाटक, ये नाटिका। और इसके अलावा भाई ये भी बता दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज़ कन्फर्म्ड द पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स at LaikaRadio.com.
3: This is Laika Gold.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: प्यार का सलाम लेते जाना। नमिता कहती है जब जाने की बातें करते हो ना आप, ऐसा लगता है जैसे आप हमसे विदा लेने की तैयारी कर रहे हो। प्रोग्राम समाप्ति पर ऐसा गीत सुनवाते हो कि हम भी अपने आप को प्रिपेयर करने लगते हैं कि भाई अब रवि जी जा रहे हैं, कल लौट के आएंगे। अच्छा लगता है। थैंक यू नमिता, सुनते रहिएगा। और भाई अर्जुन जी कहते हैं अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास, इसकी महिमा तो भाई बड़ी मशहूर है। ये महीना जो है बहुत उत्तम है, सबके लिए शुभ मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है Like a Gold 10:35 AM
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
8: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
9: Atif Aslam live in the UK.
8: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
9: Book your tickets now at AXS.
8: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
13: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
14: Mantra Holidays.
15: What's your travel mantra?
16: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and...
17: It could...
16: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
18: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
19: A
14: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

गीत के प्रोड्यूसर, इस गीत के भाई निर्माता विदु साहब से मुलाकात हुई थी। इस गीत ने उन्हें इतना फेमस बना दिया। हालांकि उन्होंने अपने संघर्षों की भाई गाथा भी सुनाई कि कैसे वो भारत के बेंगलुरु से निकल करके स्ट्रगल करते हुए कई देशों का दौरा करते हुए यहाँ पहुँचे थे ब्रिटेन में, और यहाँ अब जब उन्होंने संगीत क्षेत्र में अपनी धूम अपनी अपना लोहा मनवाया, धूम मचाई, तो साहब नाज़िया हसन की आवाज़ में ये गीत सुनाकर उन्होंने विश्व रंगमंच पर अपना नाम दूर दूर तक फैलाया।

0: डिस्को संगीत भाई उन दिनों बस यूं समझिए कि बहुत लोकप्रियता के शिखर पर था। और ये गीत हम उनके नाम कर देते हैं जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं या शादी की सालगिरह मना रहे हैं या कोई और उत्सव उनके जीवन में है। वैसे आपको बता दें भाई, आज जन्मदिन पुणे में मना रही हैं शिवांगी जोशी। ये एक अभिनेत्री हैं, एक और एक्टर है जो सीरियल्स में काम करते हैं, जैन इमाम। तो भाई ओ, उनका भी आज जन्मदिन है, वो भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन साहब आज जन्मदिन मनाने वाला मैं अगर दुनिया में होते तो मना रहे होते। नाम सुना आपने हरदन अली? नहीं, हरदन अली एच डी देवगौड़ा साहब भारत के प्रधानमंत्री थे कुछ बरस पहले, और आई थिंक ही वाज 11वें प्रधानमंत्री थे भारत के, प्राइम मिनिस्टर साउथ से बनने वाले। आई थिंक ही वाज द नहीं, हाँ उनसे पहले नरसिंह राव भी रह चुके थे। तो उनका जन्मदिन पड़ता है 1833 में, जन्मे थे 18 मई को। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद में आज ही के दिन जन्मे थे 1969 में। अब आप कहेंगे रॉबर्ट वाड्रा कौन है? अरे भाई, सोनिया गांधी जी के दामाद और प्रियंका गांधी के पूज्य पतिदेव प्रियंका वाड्रा के, तो उनका भी आज जन्मदिन है। थावरचंद गहलोत एक राजनेता हैं भारतीय राजनीति में, मंत्री हैं, यही वाज बोर्न इन 1948। और साहब आज के दिन के साथ जुड़ी है एक और घटना, सोचिए आज के दिन भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर परीक्षण किया था। पूरी दुनिया में चर्चा हुआ था कि कैसे दुनिया भर के भाई बड़े बड़े देश जो हैं, जो परमाणु से शक्ति से संपन्न हैं, वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा परमाणु हथियार बनाए या परमाणु शक्ति से जो है वो संपन्न हो, और इसीलिए ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है। लेकिन ऐसे में बरसों पहले भारत ने बिना किसी को खबर दिए, बिना किसी को पता भी नहीं लगा, भनक तही नहीं लगी, और भारत ने वो परमाणु परीक्षण किया। करने के बाद दुनिया में खलबली मची, और भाई वो ज़माना था मिसेस गांधी का, इंदिरा गांधी, उन्होंने पोखरण में वो स्माइलिंग बुद्धा नाम था उस परीक्षण का, वो इसलिए कि बुद्ध जयंती के दिन वो हुआ था, और बड़ा कामयाब परीक्षण हुआ। उसके बाद भारत की पहचान न्यूक्लियर देशों में एक शक्तिशाली देश के रूप में हुई। आपको बता दें कि ये जो परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर परीक्षण होता है ना, एक्सपेरिमेंट होता है, ये सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग ही नहीं होते, वे किसी देश की सिक्योरिटी, ताकत और टेक्निकल कैपेबिलिटी के सिंबल भी माने जाते हैं। पोखरण 2 जैसे परीक्षणों ने भारत को दुनिया की स्टेज पर, विश्व मंच पर एक नई पहचान दी थी। और बाद में तो भाई कई बरस बाद तो जब दूसरा परमाणु परीक्षण किया भारत ने, तो पाकिस्तान ने भी किया, और कई बार वो बातों बातों में धमकियां भी देते कि हमारे पास पाव पाव के परमाणु बम हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें धमकी देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने पास परमाणु बम होना ताकत का प्रतीक तो है ही, लेकिन ये लड़ाइयों को रोकता भी है, ये एक डिटरेंट बन जाता है कि इनके होते हुए कोई भी देश जल्दी से जंग नहीं करता है, एक वो रहता है इससे। और परमाणु ऊर्जा, वैसे ये जो एनर्जी होती है चिकित्सा एंड मेडिकल फील्ड में, और अंतरिक्ष अनुसंधान यानी स्पेस रिसर्च जैसे क्षेत्रों में भी फायदा पहुंचाती है। लेकिन साहब इनकी चिंताएं भी हैं, पर्यावरण प्रदूषण यानी और ह्यूमन हेल्थ पर खतरा, हथियारों की दौड़ को बढ़ावा, विश्व शांति पर संकट, ये भी परमाणु हथियारों के निर्माण से ये खतरे बढ़ते हैं। खैर साहब, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट 18 मई 1974 में किया था।
1: अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a gold.
1: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और आपको बता दें कि LemFi के रेट्स यूं हैं, एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा यानी इंडियन करेंसी में दे आर गिविंग 128.82 रुपीस, पाकिस्तानी 372.82, श्रीलंकन 438.17, बांग्लादेशी टके 164.34 और अफगान अफगानी 85.18.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is sold at the rate of 109.36 pounds per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. India Cricket Score Updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
0: और आपको याद दिला दें भाई, IPL का जो आज का मुकाबला है वो खेला जाएगा दो साउथ की टीमों के बीच. चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद विल बी प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर इन चेन्नई. तो मैच दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगा. स्कोर के आंकड़े आपको वो अगला प्रोग्राम कौन पेश कर रही है वो बताएंगी.
3: मैं.
0: आप कौन है मैडम?
3: मैं सरिता
0: अग्रवाल. सरिता अग्रवाल.
3: ओए भूल जाते हो, भुलक्कड़, हर चीज भूल जाते हो.
0: मुझे सब याद रहता
3: है. मैं बताऊं लोगों को कि क्या क्या भूल जाते हो? हमेशा अपना वॉलेट भूल जाते. ये तो मैं
0: वो तो अपने भाई रिचार्ज धनवान आदमी
3: औरत हूँ. मैं बता देती हूँ कि रवि जी आपका वॉलेट
0: नहीं बता देती हूँ लेकिन वापस तो नहीं करती ना. ये बात क्या है कि धनवान लोगों की निशानी है. यहाँ पर रिच लोगों की लिस्ट पढ़ो. बड़ी मुश्किल से मैंने अपना नाम कटवाया उसमें.
3: नहीं रवि जी, सच्ची में भूल जाती हूँ. आप बहुत दफा अपना टेलीफोन तो मैं कितनी दफा दे के आती हूँ बाहर की.
0: हाँ तो और लोगों को दे आती हूँ ना. मेरा फोन मुझे वापस किया करो ना आप. सरिता सबरवाल विल बी योर होस्ट आफ्टर 1 o'clock न्यूज, सिटिंग इन फॉर अपने बाली भाई. भाई ये बात सही करी है सरिता कि मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ, बहुत चीज़ें भूल जाता हूँ. क्या करें साहब, बताते पहले तो ये क्रिकेट का संदेश सुना दूं पहले, यही ना भूल जाऊं.
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे. Remitly UK लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA.
0: जो कुछ भूलता हूं ना वापस मिल जाता है किसी न किसी तरह से. आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार बहुत तो फोन तो मैं 5-6 बार गुम कर चुका हूं और सब फोन वापस मिल गए. एक बार तो साहब 7 दिन बाद मिला, एक बार 3 दिन बाद मिला, क्योंकि उसकी लोकेशन तो होती है मेरे पास. ढूंढता ढूंढता सूंघता सूंघता मैं पहुंच जाता हूं वहां. और कई बार तो भाई लोग खुद पहुंचा देते हैं. पता नहीं कैसे उसकी पॉकेट में, फ़ोन की वो छोटी सी पॉकेट में कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है, उन्हें पता लग जाता है रवि शर्मा का है. देने घर आते हैं. क्या बात है. मैं भाई अपना एक बार टिफ़िन भूल चुका हूँ, अपनी स्टिक भूल चुका हूँ, पर्स तो कई बार भूला हूँ, फ़ोन कई बार भूला हूँ. लेकिन यकीन मानिए, क्योंकि ईमानदारी की कमाई है भाई, शरीफ आदमी, इसलिए जितनी चीज़ें गुम की हैं सब वापस मिल गई. एक बार प्लेन में मैं अपना फ़ोन छोड़ आया था, हवाई जहाज़ में, वो भी मिल गया.
4: ये है
2: Like a Gold.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
6: गारंटेड.
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
6: फोन 02085748410.
5: 2400 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: आउटस्टैंडिंग.
4: yet.
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
7: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
7: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
13: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
13: high appreciation
12: in Dubai.
14: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jay's Entertainment line avi rahya che sakhna rejo husband ji Leena Shah ane Samir Shah sathe hasya ni full guarantee. Fridays 26 June 27 patidar samaj Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate visit karo eventbrite.com .co.uk call karo video rama athwa call karo mr b 07860280655 sakhna rejo husband ji.
15: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
16: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
15: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
16: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
15: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
16: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
15: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
17: Prem past and future vache atkailu ek deal.
18: Tumne shu lage che. Hu ya sache wedding plan karvavi chu.
17: Wa ki chuki love story. Starring Pooja Joshi, Parikshit Tamalia, Bhavin Bhanushali, Miloni Johnsa. A film by Dhwani Gautam. Releasing on 15th May.
19: Aa family wali feeling ne main tya bahut miss kari sir.
20: London, good news. Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Carry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
21: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
22: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
23: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
21: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
22: Thanks. Playtime's over. Lovely.
24: Feel the fun. Play Ojo.
25: 18 plus gamble aware.
26: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: चलने का समय हो गया है।

सरिता सबरवाल विल बी विद यू आफ्टर 1 o'clock न्यूज एंड रवि शर्मा इज साइनिंग ऑफ. सी यू टुमारो. हैव अ सुपर्ब डे.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए होंगे। पहला गीत था 1942 अ लव स्टोरी से, मनीषा कोइराला एंड अनिल कपूर ने इस फिल्म में काम किया था एंड इसका संगीत दिया था आर डी बर्मन साहब ने। और दूसरा गीत मैंने फिल्म दर्द से चुना, 1981 की फिल्म थी एंड खयाम साहब का था संगीत एंड ये दर्द आई थी 1981 में, जिसमें काम किया था हेमा मालिनी एंड राजेश खन्ना ने और पूनम ढिल्लन भी थी। राइट, ये तो फिल्म की इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने और अब ज़रा आपसे जान लूँ कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, द कम ऑन चेयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाती है सरिता आप ही के लिए। आपके मन को बहा जाए तो आपकी तरफ से मुझे इशारा चाहिए। वैसे बहुत सारे इशारे मिल चुके हैं, थैंक यू एवर सो मच। मुझसे पहले ही आप चले आते हैं वेलकम करने के लिए, लेकिन मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका खैर मकदम है। अब ज़रा प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और ये भी जान लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to कितने पैसे, 128 rupees and 15 paisas। और सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ £75 वाउचर एवरी वीक व्हेन यू सेंड ओवर £1,000। ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। वाह, बहुत अच्छी डील है, तो देर मत कीजिएगा, आप जाएं और पैसे ट्रांसफ़र ज़रूर कराइएगा। एंड TNC अप्लाइज, ये मैं आपको साथ में बता दूं, जितना बड़ा अमाउंट होता है उतना ही अच्छा रेट मिलता है।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: Two businesses,
4: same town,
3: same service.
4: One appears on page one of Google,
3: the other doesn't.
4: Guess which one gets the customer?
3: The truth is brutal.
4: The first page of Google gets the business.
3: Everyone else gets what's left.
4: So here's the real question.
3: When your customers search for what you sell, do they find you?
4: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
3: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
10: No more worries for me or you. staff or travel. At all protected.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन द वॉइस दैट touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
12: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
13: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
15: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
16: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
16: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
15: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
16: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
17: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
18: 25? Seriously?
17: Sounds like Ojo time.
18: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
17: Sorry about the wait. How can I help?
18: You can help me celebrate. I won.
19: Feel the fun. Play Ojo.
20: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
21: Like a goal. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
22: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: क्या हुआ।
1: क्या अंदाज था राजेश खन्ना का, व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म। अमर प्रेम से चुना था मैंने इस गीत को, शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की जोड़ी ने कमाल किया था इस फिल्म में। आर डी बर्मन साहब का संगीत आपने सुना और ये गीत आप तक पहुंचाया।
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: और जहाँ भी बैठे आप सुन रहे हैं, अपने होने का मुझे एहसास दिला रहे हैं। थैंक यू एवर सो मच। अगला गीत भी आप जरूर पसंद करेंगे, फ्रॉम द फिल्म अभिलाषा।
2: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
1: ये लता जी एंड किशोरदा की आवाजें। और बता दूं कि आज के नेक्स्ट आवर में आप सुनेंगे रीमा लागू जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और कुछ एक गीत जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया।

0: कभी कोई दिल में एक दफा आ जाए तो कहाँ जाता है, वो तो बस अपना होकर रह जाता है, होता है ना ऐसा ही। आपके साथ भी जरूर ऐसा ही हुआ होगा।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold.
0: जी हाँ, आपके पूरे दिन का इंतज़ाम हमने किया हुआ है, अच्छे अच्छे गीतों के साथ आपका मनोरंजन करते हैं और पुरानी यादें ताज़ा कराते हैं। बताइए क्या है गीतों में, कौन सा वर्ड बार बार सुनने को मिल रहा है, पता

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत हमने चुना था आज की ये प्रोग्राम का सेकंड आवर का पहला गीत, बहुत प्यारा गीत, और वो किस फिल्म से था आपको याद है या नहीं याद है? चलिए मैं बता देती हूँ, फ्रॉम द फिल्म कुछ कुछ होता है, और दूसरा गीत फ्रॉम द फिल्म कयामत से कयामत तक। और इन दोनों गीतों को प्ले करने की एक वजह ये भी थी कि चाहे इन पर ये गाने पिक्चराइज नहीं हुए, लेकिन ये सीन में थी और बहुत प्यारी शख्सियत जो हमें छोड़कर चले गई 18 मई 2017 में, पर उनकी मुस्कान, उनकी प्यारी सी आंखें सभी को याद है। वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट बिलवड फेसेस रीमा लागू, द वुमेन विद विच वी डिफाइन द आईकॉन, द ऑन स्क्रीन मदर फॉर एन एंटायर जेनरेशन। चाहे वो कोई भी एक्टर थे, बड़े बड़े एक्टर्स की मदर्स का रोल उन्होंने किया। रीमा लागू बॉर्न एज नयन बदभाड़ी and on 21st of June 1958 and 18th May 2027 aaj hi ke din wo is duniya ko chhod kar chale gayi। Was an Indian theater and screen actress known for her work in Hindi and Marathi cinema, and she began her acting career in the Marathi theater and became a household name for playing motherly roles in 1990s and early 2000s. रीमा लागू's करियर एज एन एक्टर बिगैन एज ए चाइल्ड एक्टर, इन्फ्लुएंस्ड बाय हर मदर हु वॉज अ मराठी स्टेज एंड फिल्म एक्ट्रेस, एंड शी वर्कड एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन 5 फिल्म इंक्लूडिंग मास्टर जी डायरेक्टेड बाय दुर्गा खोटे। एंड नयन बादाड़ी एंड अडॉप्टेड द नेम रीमा लागू आफ्टर मैरिंग एक्टर विवेक लागू, एंड बिफोर शी बिकेम बॉलीवुड्स फेवरेट मां शी वॉज ए चाइल्ड आर्टिस्ट एज आई टोल्ड यू, एंड शी अपियर्ड इन 9 फिल्म्स एज ए यंग परफॉर्मर, द कैमरा लव्ड हर फ्रॉम द स्टार्ट। रीमा लागू एक्चुअली वर्कड एट द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुरू में फॉर नियरली डेकेड, मतलब 10 साल तक, एंड येस द वूमन who ruled the silver screen once balanced ledger and passbooks. So it was her colleague थी, उसकी colleague, उन्होंने उन्हें encourage किया था कि pursue in acting. And वहीं उनको उनके husband मिले थे विवेक लागू and in the bank, and they married in 1976, though later went their separate ways. सो इन दोनों फिल्मों के जो गाने आपने सुने, इन ये गाने इन फिल्मों में ये इनका मदरली रोल था। बट ये बता दूं कि शी फर्स्ट रोज टू प्रोमिनेंस विद द हिंदी फिल्म कयामत से कयामत तक इन 1988, वेयर शी प्लेड जूही चावला'स मदर, एंड शी वॉज सीन इन अ कॉन्ट्रोवर्शियल रोल इन अरुणा राजेश रिहाई इन 1988, एंड देन स्टार्टेड इन द ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया इन 1989 एज सलमान खान'स मदर, एंड देन इन साजन अगेन सलमान खान'स मदर, हम आपके हैं कौन अगेन, एंड हम साथ साथ हैं इन 1999। और भी बहुत सी बातें बताऊंगी, लेकिन पहले जरा ये काम कर लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, अगर इनके जरिए आज पैसे करवाना चाहते हैं ट्रांसफर, तो आपको रेट मिलेगा एक पाउंड के बदले 128 rupees and 15 paisas, और सेंड मनी टू इंडिया वाय SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून, एंड बी इन टू विन 75 pounds voucher every week when you send over 1,000 pounds, and also a 1 gram gold coin when sending over 2,000 pounds. So TNC applies, aur der mat kijiye, iska fayda uthaiye.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: जी हाँ, अगला गीत मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म हम आपके हैं कौन, और समधी और समधन वाले गीत में आपको ज़रूर याद होगा रीमा लागू, इन पर ही गाना पिक्चराइज हुआ था। आफ्टर दिस
2: Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
1: New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: This Eid ul-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit WesternUnion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
5: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
6: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु गुरु,
7: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
5: शुभ तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र शीघ्र
7: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208 514 5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
9: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Lyca Gold.
10: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 23 23 or visit startours.co.uk.
14: પ્રેમ પાસ્ટ અને ફ્યુચર વચ્ચે અટકાયેલું એક દિલ.
15: તમને શું લાગે છે? હું અહીંયા સાચે વેડિંગ પ્લાન કરવા આવી છું.
14: વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી. સ્ટારિંગ પૂજા જોશી, પરીક્ષિત તામલિયા, ભાવિન ભાનુશાલી, મિલોની જોન્સા. અ ફિલ્મ બાય ધ્વની ગૌતમ. રિલીઝિંગ ઓન 15th મે.
16: આ ફેમિલી વાળી ફીલિંગ ને મેં ત્યાં બહુ મિસ કરી છે.
17: London, good news! Aapka favorite iTag ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTag is open 24/7 with free parking. Full iTag at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
18: Lyca Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LycaGold.com.
19: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: इस गीत के जरिए हमने याद किया रीमा लागू जी को. शी स्टार्ड इन एक्शन ड्रामा फिल्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, गुमराह में 1993 एज श्रीदेवी मदर हु वाज ओनली 5 years यंगर देन हर. Can you believe it? Her Gumrah was the 7th highest gross film of the year at box office. और जय किशन में अक्षय कुमार की मदर का रोल किया था. रंगीला में उर्मिला मातोंडकर का, ये दिल लगी, दिल वाले, रंगीला, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, वास्तव, बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया. एंड वास्तव में जो रोल था इन दिस रोल दैट वन हर अ 4th फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस. एंड रीमा लागू प्लेड द मदर ऑफ अ गैंगस्टर played by Sanjay Dutt, aapko yaad hoga, and she has been credited in the media as a coming of a new age mother in Hindi cinema. So bahut si filmon mein inhone kaam kiya as a mother. To main zyada geet nahi, lekin un filmon ke kuch ek geet shamil kar rahi hu. Ummeed karti hu aapko pasand aa rahe hain. Ye geet aap tak pahunchaya tha kisne?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: भी ऐसा माना जाता है कि रीमा लागू वॉज अ ट्रू प्रोफेशनल एंड शी वॉज शूटिंग फॉर द टीवी शो नामकरण जस्ट आवर्स बिफोर शी पास्ड अवे इन 2007.

0: इन गीतों के जरिए रीमा जी को हमने याद किया, हु वॉज अ प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल इंडिविजुअल, लास्ट मिनट तक काम करती रही. रीमा लागू वॉजन जस्ट एन एक्ट्रेस, शी वॉज एन इमोशन. हर वॉर्म्थ, हर ग्रेस एंड हर अनफॉरगेटेबल स्क्रीन प्रेजेंस कंटिन्यू टू लिव ऑन द हार्ट ऑफ मिलियंस. एंड रीमा लागू हैड बीन शूटिंग फॉर द टेलीविजन सीरीज नामकरण टिल 7 PM ऑन 17th of May 2017, आफ्टर शी कंप्लेंट ऑफ अ चेस्ट पेन लेटर दैट नाइट. एंड शी वॉज टेकन टू कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानीज हॉस्पिटल इन मुंबई एट 1 AM एंड शी डाइड एट 3:15 AM विद कार्डियक अरेस्ट. एंड एट द टाइम ऑफ डेथ शी वॉज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग परफेक्टली फाइन एंड हैविंग नो हेल्थ इश्यूज. हर फ्यूनरल वॉज परफॉर्म्ड बाय हर डॉटर. एंड हम यही कहेंगे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. और उम्मीद करती हूँ जो गीत मैंने शामिल किया आपने पसंद किए. ये गीत आप तक पहुँचाया
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे. अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर.
0: जी हाँ, जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ मैं कि कॉलिंग ऑल द किशोर कुमार फैंस, आप ध्यान से सुन ले. स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन इंद्रानी, संजय एंड द 515 बैंड. एंड इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th June एट द प्रिंस रिजेंट होटल चिगवेल, एसेक्स में है. ये एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका गोल्ड रेडियो.
2: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Leica Extra Podcast Update.
0: राइट, आपको बता दें कि इस वक्त इस बारी के एपिसोड में क्या है. इंडिया वीक शोकेस होस्टेड बाय अनुज राठिया एंड लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक. एंड फ्रॉम कब से 26 मई से लेकर 31 मई तक. एंड अगर पुराने एपिसोड्स आप देखना चाहते हैं तो एपिसोड्स हैं वेडिंग एंड बियॉन्ड के बारे में, होम स्कूलिंग डिबेट, विल एंड प्रोबेट. एंड लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट कहाँ मिल सकता है आपको? ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल पर एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
4: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road, Wembley. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट TravelHubWorld.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
10: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
9: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
10: And you didn't pay those massive roaming charges?
9: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
11: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
12: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
13: Atif Aslam live in the UK.
12: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
13: Book your tickets now at AXS.
12: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio.
14: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
15: Mantra Holidays.
16: What's your travel mantra?
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
18: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All at all protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
19: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: तेरे गालों की कसम ओ सनम,
1: दिल तेरा है मैं भी तेरी हूं सनम, दिल
2: भाई बहुत से लोगों को देखा है कसम खाते हुए, किसी ने पता नहीं किसी की आंखों की कसम कभी खाई या नहीं, बालों की कसम खाई या नहीं खाई, अगर खाई है तो मुझे बता सकते हैं। अभी अभी हमें जगतार जी ने ज्वाइन किया वैंकूवर कनाडा से, और बहुत से मैसेजेस हैं। निर्मला जी आप भी आए, विजय गुजरी जी, मनु जी, भारती जी, उल्लास इन टोरंटो, विजय गनोवा जी, हंसा बोरा जी, प्रतिभा जी, दिनेश जी एंड इजाज फ्रॉम शम, मानसी जी, अरुणा एंड भूपेंद्र पटेल जी एंड राजेश जी आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, सलमा इन मेडस्टर्न, अर्जुन जी, विनी विनोद एंड वरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कौन हैं, आपने नाम नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, आपके टेलीफोन की लास्ट 3 डिजिट्स हैं 417। अरुणा जी, महेंद्र बरजारिया जी इन साउथ हैरो सहर, मृदु पमीस जी इन स्लाव, आप सब बड़े प्यार से मेरा साथ दे रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। जिनके नाम रह गए आई एम सो सॉरी, पर उम्मीद करती हूँ अब तक का प्रोग्राम आपने इंजॉय किया। प्रोग्राम के लास्ट आवर में हम कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और भी है, कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और बहुत ही प्यारा सा गीत जो बड़े अरसे के बाद मेरे प्रोग्राम में शामिल हो रहा है, ज़रूर सुनिएगा और सुनते रहिएगा।
3: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons, proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste, and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
2: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड।
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: लंदन, दिस 20th June, बॉलीवुड की पावर हाउस वॉइस भूमि त्रिवेदी आ रही है लाइव इन लंदन।
6: राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे।
5: गेट रेडी फॉर वन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, डांस एंड फुल ऑन एनर्जी।
6: उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी।
5: प्रेजेंटेड बाय वन वर्ल्ड इवेंट्स एंड SR इवेंट्स एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लाव, 6 PM to 11 PM। बुक नाउ एट srevents.com। भूमि त्रिवेदी लाइव इन लंदन, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India,
10: live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
11: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
12: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
13: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
12: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
13: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
14: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
15: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
14: Call today on 01923 883 100
15: or go to skylordcruiseandholidays.com.
14: Book with confidence.
15: We're Atoll protected.
16: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 02071321458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
17: Across London, this is Bally Brambat on Laika Gold. Another huge giveaway is coming. Laika Radio Network.

0: पीछे गुजरी जी कहते हैं एल्विस प्रेस्ली ऑफ बॉलीवुड, यस डेफिनेटली। दिल देखे देखो फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को, 1959 में आई थी ये फिल्म आफ्टर द सक्सेस ऑफ तुमसा नहीं देखा इन 57। शमी कपूर को इसी तरह के रोल मिले और खूब इन्होंने सभी को नचाया भी और अच्छे अच्छे गीत भी इन पर बहुत सारे पिक्चराइज हुए रफी जी की आवाज में।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: चलिए देखें धर्मेंद्र जी हेमा जी के बीच में क्या चल रहा है ये।

0: आशा भोसले एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ें, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड तुम हंसी मैं जमा का टाइटल ट्रैक था, और पहले फिल्मों में हमेशा टाइटल ट्रैक सुनने को मिलते थे। और म्यूज़िक की बात करें तो शंकर जयकिशन का संगीत दूर से पहचाना जाता, आर डी बर्मन साहब का हो तो भी पहचाना जाता है, एंड कल्याण जी आनंद जी का हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सबके संगीत अलग अलग और वो पहचान बन जाती थी उनकी। लेकिन आजकल कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि नए गीत जो हैं वो कॉपी होते हैं ज़्यादातर, है ना, ऐसा ही होता है। एनीवे, ये गीत आपने सुना, पिक्चराइज हुआ था धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी पर। गीत सुनते सुनते हमारी मिसेस शेख का मैसेज भी मुझ तक पहुंच गया। मिसेस शेख सुन रही हैं बड़े प्यार से, अमरजीत जी आप सुन रही हैं, तोची जी आप भी बड़े प्यार से सुनती हैं, इंतजा आप, थैंक यू, आपका भी इसी तरह से सुनते रहिएगा। अगला गीत भी आपके लिए।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ji haan, ye geet tha agar Dairy Valley ki taraf se, to agla geet aa raha hai Coca Noodles ki taraf se.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: जया बच्चन जी मना रही थी अपने रूठे रूठे पिया को, और इनके पिया थे उस फिल्म में विजयानंद, खोरा कागज़ फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को। 1974 में आई थी ये फिल्म, और बहुत पसंद है ये गीत आपको अमरजीत, तो आपने आपके नाम किया।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.93, Pakistani rupees 373.5, Sri Lankan rupee 444.43, Bangladeshi taka 164.57, Afghanis 83.85 and US dollars 1.33.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LAIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: राइट भी, गोल्ड का रेट मार्केट में इस वक्त चल रहा है 109 pounds and 36 pence का एक ग्राम सोना।
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Right, भी इस वक्त मैच चल रहा है, और मैच किसके बीच है आपको बता दें, CSK एंड साथ में है SRH। अब आप बताइए कौन कौन है ये, चेन्नई सुपर किंग्स एंड सनराइज हैदराबाद। सो चेन्नई सुपर किंग्स चूज टू बैट फर्स्ट, एंड इस वक्त चेन्नई सुपर किंग ने बना लिए 86 रन्स और उनके दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आंखों देखा हाल हम बताते रहेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK Limited इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
2: ये है
4: Leica Gold.
1: Leica Gold, traffic and travel.
5: This is Martin with your travel on the A312 Church Road northbound, just after the White Hart roundabout. The inside lane's blocked. It's due to an accident. Traffic's heavy in approach there. The A4020 Uxbridge Road, heavy between the A312 The Parkway and Southall Park. The Parkway slowing southbound before you get to the M4 Junction 3. It's slow on the A406 North Circular Road northbound before you get to the Hangar Lane side Italy. A3 West Hill, heavy northbound between Tibbetts Corner and Upper Richmond Road. To the Tube, and no service on the Northern Line this afternoon between Muirgate and Morden, and severe delays on the rest of the line due to a faulty train, and minor delays on the Victoria line due to an earlier faulty train at King's Cross and Pancras.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
0: चलिए भी, आपने सब कुछ जान लिया क्रिकेट में क्या हो रहे हैं, और अब हम जानना चाहेंगे हमारी सैंडी शाह से कि इनके प्रोग्राम में क्या चल रहा है। सैंडी, क्या चल रहा है आपके प्रोग्राम में आज? तुसी दसो, मैं दसा, मैं एक ये और वो, तो वो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि शम्मी कपूर के शायद गाने सुनकर चॉइस थी।
6: शम्मी कपूर, सो ये या वो शम्मी कपूर के गाने।
0: ओके, एंड दूसरा, ये सच है या झूठ?
6: झूठ बोला।
0: झूठ बोला सैंडी, तुमने झूठ बोला। उसमें क्या पूछने वाले हो? नहीं बताऊंगा। अच्छा, नहीं बताऊंगा। सैंडी, आई रियली लव योर विंटेज गर्ल्ड। रियली मेरी ड्राइव अच्छी हो जाती है।
6: अपनी उम्र का,
0: वैसे पुराने पुराने गाने अच्छे लगते हैं मुझे, एंड समटाइम्स यू प्ले
6: एक दिन सरिता।
0: हाँ, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं यहाँ पर 10 बजे तक बैठने वाली।
6: बालों में रंग लाके आ
0: जाना। ना ना ना ना। चलिए भाई, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। बाली जी की जगह ये प्रोग्राम मैं पेश करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि सारे प्रोग्राम्स आप इंजॉय करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।
2: ये है
4: Leica Gold.
1: Bali Brumbat on Gold Afternoons. Like a
4: Gold Afternoons with Bali Brumbat. Bali Brumbat is proudly sponsored by Gemin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Gemin Foods, the authentic taste of India.

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Danube Prime Location
4: High Appreciation
5: in Dubai
6: The voice that touches every soul Star Express presents Hariharan's Soul India
7: Live in London Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
6: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
7: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit StarTours.co.uk.
11: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
12: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
11: Call today on 01923 883 100
12: or go to skylordcruiseandholidays.com.
11: Book with confidence.
12: We're Atoll protected.
13: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
14: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
13: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
15: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 02087677627
16: Like a Radio Network proud hospitality partner Ragasan Gold Drive with Sandy Shah
17: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@laikaradio.com
16: लाइका रेडियो फाइनलिस्ट एट द रेडियो एकेडमी आरियाज 2026

0: It is indeed. Good afternoon. Welcome back to the second hour of Drive. Hope you're good. Got my lovely cup of char now, so rearing to go. Got two wonderful back-to-back songs. Thank you for your messages, by the way. I've responded to everyone. Keep them coming.
1: Like a gold. Let's return to the biggest hits back-to-back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: Home se sasta, kahin nahi mil sakta.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. Gold Drive with Sandy Shah.
4: Mujhe kuch kehna hai.
5: Mujhe bhi kuch kehna hai.
4: Mujhe kuch kehna hai.
5: मुझे भी कुछ कहना है
4: पहले तुम
5: पहले तुम
4: पहले तुम
5: पहले तुम
4: पहले तुम
5: तुम
4: तुम
5: तुम
4: तुम
5: तुम
4: तुम
5: तुम देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए
4: मैं कहती हूँ

0: This is Leica Gold. Leica Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. We've still got delays on the M4 onto the elevated section eastbound ahead from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. The A312, the partway heavy southbound before the M4 Junction 3. The A4020 Uxbridge Road steady between the A312, the partway and Southall Park. The A40 Western Avenue's east westbound before you get to Gypsy Corner. Still got congestion on the A316 Chertsey Road westbound from Twickenham Bridge to Hospital Bridge Road roundabout, and slow on the A406 North Circular Road both ways before the Hangar Lane gyratory. To the Tube, and minor delays on the Northern Line due to an earlier faulty train, and minor delays on the Circle Line anti-clockwise due to cancellations.
2: At Tesco, we know that right now every little helps. That's why we've made Aldi Price Match available in over 2,000 Tesco Express stores. Price matching on essentials so you can bag the basics with confidence. When every penny counts, just look out for the Aldi Price Match logo next time you nip into your local Express. Tesco, every little helps. Prices checked and matched in Aldi stores and online twice weekly. Pro rata excludes promotions. Selected products excludes Northern Ireland and Woosh. See tesco.com/Aldi Price Match.
0: Leica Gold.
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
4: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorised by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
5: Location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
8: 02085748410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 Our line. The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश। एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
12: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हसबंड जी।
13: जी।
14: मंत्रा हॉलीडेज विशेस यू एंड योर फैमिली अ हॉलीडे सीजन फिल्ड विद जॉय, लाफ्टर एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स एज यू सेलिब्रेट। स्टार्ट प्लानिंग योर नेक्स्ट एडवेंचर विद अस। विजिट www.mantraholidays.co.uk और कॉल 02023 773 633। नाउ एप्टा बॉन्डेड।
15: मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
16: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद।
17: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमीन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
16: जेमीन्स फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
18: Ashwini, in for Anisa Nasir on The Evening Show on Leica Gold. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
19: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

भाई जिन्होंने आप भी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। तीन फीचर्स हमेशा की तरह अब आप समझ ही चुके हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है ना? मंडे निकल गया, बस कॉन्ग्रेचुलेशंस। मंडे शाम तक पहुँचना ही ना काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाए, पर आपकी सारी स्ट्रेस को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी इस दोस्त अश्विनी की। दो बड़े ही अमेजिंग ट्रैक्स के साथ में हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। आपके हालचाल पूछ के हो गए? हाँ, अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है भाई, फटाफट आके अपने अपने नाम लिखवाओ। और जिन्होंने भी नाम लिखवा दी ना, ये रिमेंबर स्कूल डेज में कैसे जब कुछ भी स्पेशल हुआ करता था क्लास में, तो टीचर के पास में एक चॉकलेट का डिब्बा रखा होता था कॉर्नर में, और हम सबकी नज़र वो चॉकलेट के डिब्बे पे होती थी। तो एक एक चॉकलेट अपने मेरे तरफ से प्लीज़ खा लो, ठीक है? आप लोगों को जो भी पसंद है ना, चॉकलेट मीठा,

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 7:24, 24 मिनट हो चुके हैं 7 बज के। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। सभी लोग पूछ रहे हैं भाई मेरा वीकेंड कैसा रहा। मस्त रहा, एकदम बढ़िया। यू नो, एक तो ऑडिशंस लाइंड अप थे तो उसकी स्क्रिप्ट लर्न करनी पड़ती है, तो कभी कभी लगता है कि पढ़ाई ना छूटती नहीं है हम लोगों से, है ना। बट मज़ा भी बहुत आता है जब स्क्रिप्ट हाथ में आती है, तो उसका मज़ा अलग रहता है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी चहेती चीज़ों को जब करते हैं उसका मज़ा बहुत अलग रहता है। आई एम श्योर आप सभी इकीगाई के बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इकीगाई का मतलब क्या है, ओके, जापानीज़ कंसेप्ट है। ये जापानीज़ कंसेप्ट ये कहता है कि एक तो इंसान को अपना पैशन पता होना चाहिए, पैशन पता होने के बाद में उसे फॉलो करते आना चाहिए। एंड इफ़ दैट पैशन पेज यू, दैट इज़ वॉट इज़ योर इकीगाई। सो आई थिंक मुझे तो मेरा इकीगाई मिल गया है यहाँ पे। जब आप लोगों से आके बैठ के बातें करती हूँ, पैशन फॉलो करती हूँ अपना, आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, बढ़िया से गीत प्ले करते हैं। एंड फॉर मी रेडियो इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। आई डोंट डील विथ ह्यूमंस, आई डील विथ इमोशंस। दैट इज़ वॉट इट्स फॉर मी। एंड व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, लेट्स टॉक अबाउट इमोजीज। व्हाट्सएप पे जो इमोजीज होते हैं ना, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी समय हो रहा है यादों की बारात के लिए। यादों की बारात में मुकेश जी की आवाज़ में कन्हैया फिल्म से आप सभी के लिए। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, मैं इवनिंग है, बढ़ाना बढ़ा लो।
0: ये है लाइका गोल्ड द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: बारात
1: यादों की बारात।
2: भाई अटेंडेंस तो लगी जा रही है है ना। जितने हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं अराउंड द ग्लोब अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, तो मैंने जैसे कहा कि मुंह मीठा कर लो, कुछ ना कुछ खा लो क्योंकि आप आ गए और आपकी मंडे इवनिंग तो सॉर्टेड है ना। अभी फुल ऑन मस्ती शुरू हो गई। मैंने आप सबसे पूछा है कि आप अपना अपना टाइम कैसे वेस्ट करते हो, मैंने अपना बता दिया था कि रील्स देख के। तो नीलेश जी कहते हैं कि मैं सुडोकू खेल के अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, बाकी के लोग भी कुछ ना कुछ बता रहे हैं। किसी एक इंसान ने बड़ा मज़ेदार बताया कि एक दिन मैं इतना बोर हो रहा था कि मेरे घर में जो स्टेयर केस है उसमें जो वो वुडन रॉड्स जैसी डिज़ाइन लगी थी तो मैं वो रॉड्स गिनता रहा, तो उस दिन मैंने अपना टाइम वैसे वेस्ट किया। इंटरेस्टिंग ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताओ भाई कि टाइम वेस्ट कैसे किया जा सकता है। कभी कभी लोगों को टाइम वेस्ट करते भी आना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है वेस्ट करने के लिए। अरे इतना भी बिजी ना रहो, थोड़ी सी फुर्सत निकालो। कभी कभी बोर होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बोर हो गए ना तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी ना फूट फूट के बाहर निकलेगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे अपने आप से मैं कुछ भी नहीं कहती। ये रिसर्च द्वारा प्रूव किया गया है, सर्वे किया गया है, उसमें कहा गया है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। एनीवेज मैं बात करी थी इमोजीज के बारे में। देखिए आप और हम एक दूसरे को अभी तो चलो ओवर द ईयर्स हम लोग एक दूसरे को रील्स भेज के, जो सोशल मीडिया पे रील्स आती है वो भेज के अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, हमें क्या फील हो रहा है ये व्यक्त करते हैं, और ये तो चल ही रहा है। और साथ में इमोजीज जो होते हैं ना, जो व्हाट्सएप पे आप अपना गुस्सा, प्यार, थम्स अप दे देते हैं यस बोलने के लिए, वो सारे जो इमोजीज है, तो पता है आपको कितने इमोजीज हैं? कुल मिला के 3953 इमोजीज हैं। 3953 बनाने वाले ने भी कितना गजब अपना दिमाग लगाया कि ऐसे भी चेहरा हो, वैसे भी चेहरा हो, ये डिज़ाइन कर सकते हैं, वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आई एम एक्चुअली अमेज्ड एट द क्रिएटिविटी ऑफ सम पीपल। नेक्स्ट ट्रैक की तरफ चल रहे हैं, सुरेश वाड़कर आशा भोसले की आवाज में, ईमानदार फिल्म से।
0: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: At Tesco, we know that right now, every little helps. That's why we've made Aldi Price Match available in over 2,000 Tesco Express stores. Price matching on essentials, so you can bag the basics with confidence. When every penny counts, just look out for the Aldi Price Match logo next time you nip into your local Express. Tesco, every little helps. Prices checked and matched in Aldi stores and online twice weekly. Pro rata excludes promotions. Selected products excludes Northern Ireland and Woosh. See tesco.com/Aldi Price Match.
0: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईमिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मैच में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मद भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के 1000 नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टल रोड हैरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
10: Prem, past and future bache atkailu ek deal.
11: Tumne shu lage che. Hun ya sachche wedding plan karvavi chu.
10: Waaki chuki love story. Starring Pooja Joshi, Parikshit Tamalia, Bhavin Bhanushali, Miloni Johnsa. A film by Dhwani Gautam. Releasing on 15th May.
12: Aa family wali feeling ne main tya bahut miss kari cha.
13: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists.
14: Bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
13: Call today on 01923 883 100.
14: Or go to skylordcruiseandholidays.com.
13: Book with confidence.
14: We're Atoll protected.
15: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
16: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers, इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 50 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। कई लोग मुझे कहते हैं ये जो शोले का बैकग्राउंड म्यूजिक जो यूज़ होता है जब मैं गपशप करती हूँ तो ये म्यूजिक सुनने में उनको बड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली बड़ा अच्छा लगता है, यू नो दैट्स द रीजन आई सिलेक्टेड दिस वन। आई जस्ट लव दिस। इट्स लाइक चले गए यार शोले पिक्चर देखने के लिए वापस। एनीवेज, जो हमारे लेट कमर्स थे, सारे लेट कमर्स ने अपनी अपनी हाजिरी लगा दी है और इतने प्यारे हो यार आप लोग सब, सच में बड़े प्यारे हो। व्हेन आई से जो लोग लेट आके हाजिरी लगाते हैं कहते हैं कि अश्विनी जी हम लेट हो गए, तो मैंने कहा कहाँ चले गए थे, लेट हाजिरी लगाओगे तो क्या सोचा कि अश्विनी खुश हो जाएगी, माफ़ कर देगी, सजा तो लेनी पड़ेगी। और इतने प्यार से लेट कमर्स कहते हो आप जो सजा दोगे, अरे यार हम तो सिर्फ प्यारे प्यारे गीत और प्यार ही दे सकते हैं आपको। तो प्यारे गीत के लिए वो सारे लेट कमर्स जो आज अभी अभी आके हाजिरी लगाए, आप सबके लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में रामपुर का लक्ष्मण से ये गीत, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स। एनीवेज आप लोग समझ ही गए कि सारे ट्रैक्स जो यहाँ पे लगाए हैं आपके लिए वो मेरे फेवरेट ही होते हैं। प्लेलिस्ट में जब मैं अपलोड करती हूँ मैं सोचती हूँ अच्छा ये गीत पे कौन जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं वो मैसेज करेंगे, एंड अभी मैंने प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। चलिए एंजॉय करिए।
1: दिस ईद उल अज़हा शेयर द जॉय नो मैटर द डिस्टेंस, व्हेदर यू आर नियर और फार, सेंडिंग सपोर्ट इज जस्ट अ टैप अवे। सेंड मनी विद वेस्टर्न यूनियन, enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
2: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026, feel the beat, live the legacy.
3: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
5: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
6: Atif Aslam live in the UK.
7: Dil diya galla karange na.
5: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
6: Book your tickets now at AXS.
5: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
10: London, good news. Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
11: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
12: The Evening Show with Ashwini.

0: London's biggest classics all day. This is Like a Gold.
1: भाई सेकेंड आवर में आपने हमने एंट्री ले ली. पहला गीत हमने सुनाया था आईना फिल्म से, विच वॉज रिलीज इन 1993 जॉली मुखर्जी और लता मंगेशकर की आवाज़ में. दूसरा गीत हमने लिया था मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म अंदाज से, विच वॉज रिलीज इन 1971. सो दिस शो इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी. माई नेम इज़ अश्विनी एंड तीन अमेजिंग फीचर्स आपके लिए हम लेके आते हैं हर शाम. यादों की बारात, सेकेंड आवर में इमोशन ऑफ द डे, थर्ड आवर में गज़ल या कव्वाली. सेकेंड आवर शुरू हो गया है तो इमोशन ऑफ द डे में मोटिवेशन मंडे में मैं क्या सुनाने वाली हूँ उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे. लेकिन कहना चाहेंगे धन्यवाद हमारे सारे लिसनर्स को. एजाज की जैसम से हंसा वोरा जी, आपकी एनिवर्सरी है, आपने 56th एनिवर्सरी कल सेलिब्रेट की. तो भाई लाइका गोल्ड रेडियो की तरफ से, लाइका रेडियो की तरफ से, आपकी दोस्त अश्विनी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको. नंदा जी आप भी आई हैं, बिल्कुल स्वागत है आपका. शिवानी जी, हरीश जी, संध्या जी, दिलीप जी, हनीफ जी, अर्जुन जी, भारती जी, अमिता जी, फिर ये हैं हमारी रसीला जी, ओके. उसके बाद में रमेश जी एंड पन्ना जी, आप भी हमारा साथ निभा रहे हैं फिनर से. प्रदना जी, ये जो सर हैं इन्होंने, इनका पता नहीं अनामिक कुछ नाम था, फिर अब ये कहते हैं कि मेरा नाम मुकैम्बो रख दो. ठीक है मुकैम्बो सर, आपका जो मर्जी आप कहेंगे मुकैम्बो, तो हम कहेंगे मुकैम्बो. जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे. तुम अनामिक को अगर मुकैम्बो कहो, हम मुकैम्बो कहेंगे, है ना. सीमा जी, जैस्मिन जी, विनोद जी, महेंद्र जी, सहर जी, देन वैज आप भी हमें सुन रहे हैं, हरप्रीत जी हमें सुन रही हैं, वैनकुवर से कितने सारे हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं भाई, जगतार जी आप हमें सुन रहे हैं, यंग नीलेश जी, नीलेश जी अपना नाम यंग नीलेश जी बताते तो मैं इनको यंग नीलेश जी ही कहती हूँ. मिसेस शेख थैंक यू, विजय गनवा जी, ज्योति जी, उसके बाद में राजेश जी, सुधीर जी, हाजरा जी, देन इट इज सॉरी सिंपल, आपका नाम सिंपल क्यों है, यू सो गॉर्जियस यार, सिंपल तो नहीं होना चाहिए आपका नाम. भारती जी, तोची जी, रोशनी जी, अनु जी, अरुणा जी, बेप्सी जी, एंड और कौन है हमारे लिसनर्स भाई, इनका नाम कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बट एनीवेज चलिए भाई, जो जो हमें अभी ज्वाइन करते चल रहे हैं, थैंक यू सो मच. और नेक्स्ट ट्रैक जो मैं सुनाने वाली हूँ ना, अगर वॉल्यूम अप करना चाहें ज़रूर कर लीजिएगा. आप तो ऐसे ना थे इस फिल्म से, दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स. सुनेंगे ना, सुनाती हूँ.
0: This is Like a Gold. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Your £1 in British sterling can get you up to 128 Indian rupees and 20 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every week when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBIUK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: What a fabulous track. हेमलता जी की आवाज में थोड़ा स्लो वर्जन आप सबको सुनाया. आई नो बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोहम्मद रफी जी की आवाज में जो फास्ट वाला ट्रैक है वो होगा. कभी कभी वही तो ट्विस्ट और चेंज होता है ना जी. जैसे कि ट्विस्ट और चेंज आया इस एक इंसान के बारे में. अभी ये जो भाई साहब हैं, अ वॉन्टेड मैन इन ओहायो, इन्होंने क्या किया कि भाई पुलिस ने इनकी जो तस्वीर लगाई कि ये आदमी चाहिए वॉन्टेड, ऐसे उस इंसान की फोटो लगा दी. अब वो इंसान, उसने अपनी फोटो देखी एंड ही वॉज लाइक सो अपसेट कि ना ना ना दिस इज नॉट अ गुड पिक्चर. तो उसने अपनी सेल्फी ली और वो सेल्फी जो है पुलिस को भेजी, कहा कि ना ना मेरी ये वाली सेल्फी लगाओ भाई, मैं इस फोटो में ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ, तुम लोगों ने कितनी गंदी तस्वीर लगा के रखी. एंड देन ही वेंट ऑन एन रेडियो टू गिव द इंटरव्यू कि भाई देखो मेरे कैसे तस्वीरें लोगों ने लगा रखी है ये पुलिस वालों ने, मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ. एंड ऑब्वियसली वो रेडियो इंटरव्यू जब चल रहा था तो लोगों को तो वहाँ नहीं पता था ना उस टाइम तक कि इसकी फोटो छप चुकी हैं. तो पुलिस बराबर वहाँ पहुँच गई और इस इंसान को पकड़ लिया. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हमेशा कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं, फीमेल्स आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स. एक्सक्यूज मी, अब ये जो इंसान है, पुलिस थाने जब इन्होंने अपनी सेल्फी भेज दी, बताइए क्या कहेंगे अभी आप. नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रही हूँ, पिघलता आसमान से, आय हाय ब्यूटिफुल ट्रैक.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Look at you. The future is unpredictable at times, but the Open University are the experts in online learning, allowing you to fit study around your life. What's more, you'll have support from dedicated tutors every step of the way. Now, suddenly your possibilities are open. Search the Open University to find out more. The Open University. The future is open.
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Like a gold. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
3: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
3: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410.
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड, द लाइक District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands. Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
9: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, a small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
10: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
11: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
9: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
10: Thanks. Playtime's over. Lovely.
12: Feel the fun.
13: Play Ojo. 18 plus gamble away.
14: Like a Goon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
15: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 35 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। सेकेंड आवर का फीचर, जी हाँ, पहुंच गए हैं इमोशन ऑफ द डे, मोटिवेशनल मंडे। आप सभी के लिए डेडिकेटेड है ये गीत।
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। Ashwini in for Anisa Nasir for the evening show. Holiday breaks are brought to you by

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: Leica Radio, finalist at the Radio Extra Podcast 2026.
3: लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड आ गया है, एपिसोड नंबर 16 इंडिया वीक शो के, विच इज़ होस्टेड बाय अनुज एंड हमारे लाइका रेडियो नेटवर्क की तरफ से वहाँ पे अपडेट्स क्या हैं। तो वी आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम मई 26 टिल मई 31st। पास्ट एपिसोड्स में वेडिंग्स एंड बियॉन्ड, होम स्कूलिंग, डिबेट, विल्स एंड प्रोबेट, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटीफाई पे, यूट्यूब पे, अमेजोन पे, एप्पल पे एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
9: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
10: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
9: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
11: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
12: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
13: 25? Seriously?
12: Sounds like Ojo time.
13: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
12: Sorry about the wait. How can I help?
13: You can help me celebrate. I won.
14: Feel the fun. Play Ojo.
15: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gambler aware. T's and C's apply.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.
1: Ye hai
16: Leica Gold.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: For £1, you'll get 129.5 Indian rupee, 374.04 Pakistani rupee, 444.91 Sri Lankan rupee, 164.94 Bangladeshi taka, 84.32 Afghani.
14: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group.
17: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: Gold is currently trading at £109.36 per gram.
17: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: तो जिन्होंने आप भी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम है द इवनिंग शो विद अश्विनी। तीन फीचर्स आपके लिए लेके आते हैं, पहले आवर में यादों की बारात, सेकेंड आवर में इमोशन ऑफ द डे, थर्ड आवर में गजल या कवाली। धीरे धीरे हम लोग थर्ड आवर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत पसंद किया आप सभी ने जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल। बिल्कुल, हमारी जिंदगी में कितनी बार हम पास होते हैं, कितनी बार फेल होते हैं। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जब भी फेल हो रहे हैं, जब हमारे मन की बात नहीं है, तो कहा जाता है ना, ऐसे कहा गया है ना कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने हमारे लिए क्या प्लान्स बना के रखे हैं ये हमें पता नहीं होता है कि यूनिवर्स हमारे लिए क्या, कौन सी प्लेट, कौन सी थाली लेके तैयार है। हम बैठे हैं बिल्कुल छोटा सा एक बॉल लेके कि भाई मुझे तो ये चाहिए, लेकिन यूनिवर्स आपको एक बड़ी वाली थाली अगर गिफ्ट करना चाहता है तो रुक जाइए। पेशेंस बहुत बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना, क्योंकि मेहनत हम सभी करते हैं। और जब टाइम सही ना हो ना, तो पूरा सरेंडर कर दो भगवान को, पूरा ऊपर वाले को कहो बस आई एम जस्ट सरेंडरिंग यू, जो आप लाओगे चीज़ उस चीज़ के पास साथ में चलेंगे, जस्ट फ्लो विद द फ्लो, है ना। क्योंकि हम जब कुछ करके भी अचीव नहीं कर पाते, दैट मीन्स समथिंग बिग इज कमिंग योर वे, जैसे बिग सॉन्ग इज कमिंग योर वे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लाट साहब से सुनाऊंगी अभी आपको एक गीत, और उसके बाद में लास्ट ट्रैक जो होगा इस आवर का वो होगा मुकेश जी एंड लता मंगेशकर की आवाज़ में धरती कहे पुकार के, 1969 की वो फिल्म होगी। अमेजिंग से गीत लाइंड अप है। थर्ड आवर में आप और हम एंटर करने जा रहे हैं। बैक टू बैक आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। सॉरी, मैं कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं ले पाऊंगी बिकॉज प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो माफ़ी चाहते हैं। आप हमें मैसेजेस करें, कॉल करेंगे तो हम आपका कॉल उठा नहीं पाएंगे, ऑडियो मैसेजेस भी सुन नहीं पाएंगे।
17: नॉन स्टॉप क्लासिक्स, क्लासिक्स लाइक अ गोल्ड।

क्या बात है जी, थर्ड आवर में आपने हमने ले ली एंट्री। नीला नीला अंबर, अरे कहाँ नीला अंबर भाई, हम लोग यहाँ पे यूके में रहते हैं जहाँ नीला अंबर तो अभी नहीं दिखने वाला, क्योंकि अभी तो हमने बताया आपको मौसम के हालचाल कि बरखा रानी आएगी, छमछम करती हुई वर्षा रानी आएगी, बादल घिरे रहेंगे, ठंडी हवाएं रहेंगी, पता नहीं तूफान आया, पता नहीं क्या क्या क्या क्या चीज़ है। बट एनीवेज

0: किशोर कुमार की आवाज में एक कलाकार फिल्म से सुनाया आपको ये गीत, बहुत मजा आता है। मतलब यहाँ पे स्टूडियो में मैं अकेली, ये चार दीवारें, ये हमारी स्क्रीन सामने, बड़े बड़े स्पीकर्स एंड वॉल्यूम फुल, आय हाय हाय हाय हाय, मज़ा आ जाता है। स्पेशली किशोर कुमार की आवाज़ में जब ऐसे गीत हो ना तो दिल झूम उठता है। उसके पहले अलका याग्निक की आवाज़ में आरजू फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। अब जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Laika Gold. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For one British pound, you will get up to 128 Indian rupees and 20 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be into win a 75 pound voucher every week when you send over 1000 pounds. Also, 1 gram gold coin when sending over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: भाई नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रहे हैं दैट इज आर्टिस्ट ऑफ द वीक शम्मी कपूर जी के गीत। ओह पूरा हफ्ता जो है बहुत मजा आने वाला है। एक तो इनके डांस नंबर्स भी हैं, इनके इमोशनल नंबर्स भी है, ठहराव वाले गीत भी है और मस्ती भरे गीत भी है। तो नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुनाने वाली वो है जंगली फिल्म से, विच वॉज रिलीज इन 1961, दिन सारा गुजारा तो रेंगना, मोहम्मद रफ़ी एंड लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस पर हम लोगों को शम्मी कपूर जी की स्टेप पर याद आ जाती है। एंड उसके बाद में आज यस सभी लोगों ने सही पहचाना, इट्स मंडे टू गजल भी आप लोगों के लिए है। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में बहुत ही बेहतरीन गजल लाइंड अप है आप सभी के लिए यहीं पे ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: Looking to boost your career or just starting out? As the experts in online learning, the Open University has over 200 qualifications to choose from, like business, psychology, computing, and many more. With tutor support and courses that fit around your life, getting those in-demand skills employers are looking for isn't so far away. Search the Open University to find out more. The Open University. The future is open.
1: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Like a gold. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
3: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
3: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Emprio Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02 9939635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
7: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर travel mantra.
8: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
9: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
8: Call today on 01923 883 100
9: or go to skylordcruiseandholidays.com.
8: Book with confidence.
9: We're at all protected.
10: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: गजल फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Laika Gold.
0: Laika Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
3: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है द Star Tours Experience. Visit startours.co.uk.
4: हम का फसाना बन गया अच्छा.
5: अच्छा जी.
4: एक बहाना बन गया अच्छा.
5: अच्छा.

0: This is Ashwini in for Anissa Nazir on The Evening Show. Like a gold.
1: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 34 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। थर्ड आवर का फीचर भी आप सबको सुना दिया, गजल या कव्वाली। आप सबने कहा गजल, बिल्कुल गजल। कल होगा टेरिफिक ट्यूजडे। सो टेरिफिक ट्यूजडे में कौन सा गीत होगा? कोई तो टेरिफिक सा गीत लेके हाजिर हो जाऊंगी डेफिनेटली। आई जस्ट लव दिस ट्रैक, मंचली 1973 में रिलीज हुई थी, लीना चंदावरकर एंड किशोर कुमार की आवाज़ में, गम का फसाना। जिस तरीके से लीना चंदावरकर का अच्छा जी ओ माई गॉड, दैट्स अ ब्यूटिफुल, एक इनोसेंस लगता है ना उनकी आवाज़ में, स्पेशली जब ये गीत फिल्माया गया था और जब हम टेलीविजन पे देखते हैं। आई जस्ट लव द वे लीना चंदावर की आवाज़ यहाँ पे जिस तरीके से अच्छा जी उन्होंने बोला है। अच्छा जी, तो मैं आपको अभी अगला गीत कौन सा सुना रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक है, बुढ़ा मिल गया, विच वॉज रिलीज इन 1971। उस फिल्म से मन्ना डे की आवाज में और अर्चना जी की आवाज में ये गीत।
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल।
3: Visit travelhubworld.com.
4: Two businesses.
5: Same town.
4: Same service.
5: One appears on page one of Google.
4: The other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search for what you sell, do they find you?
5: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: लंडन वॉल्यूम पधारी दो और 20 जून बॉलीवुड ने पावरफुल वॉइस भूमि त्रिवेदी आवी रही छे लंडन।
7: राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे
6: धमाकेदार म्यूजिकल नाइट पार्टे रेडी थई जाओ।
7: उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी।
6: प्रेजेंटेड बाय वन वर्ल्ड इवेंट्स एंड एसआर इवेंट्स एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लाउ 6 PM to 11 PM। टिकट्स बुक करो srevents.com पर। भूमि त्रिवेदी लाइव इन लंडन, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
11: BAPS મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
10: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
11: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
10: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
11: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
10: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ
11: ટ્રાવેલ વાન્સ and you will travel again and again.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 129.35 Indian rupee, 374.3 Pakistani rupee, 447.44 Sri Lankan rupee, 165.08 Bangladeshi taka, 83.90 Afghan Afghani.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £109.36 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: टिक टिक करते हुए घड़ी घड़ी अश्विनी जरा एक बार टाइम चेक कर लो. इट्स 43 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी. कंग्रेचुलेशंस, हम लोगों ने मंडे को पार कर लिया है ना. फर्स्ट डे ऑफ द वीक निकल गया. सो मंडे कहीं ना कहीं किसी के लिए बहुत अच्छी शुरुआत भी लाता है, क्योंकि हो सकता है उनका फर्स्ट डे ऑफ जॉब हो, फर्स्ट डे हो किसी ऐसे एक्सपीरियंस का जिसके लिए वो शायद जिंदगी में रुके हो. फर्स्ट डे हो अपने आप के साथ में टाइम बिताने का. सो डेफिनेटली आज का दिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यादगार बना होगा. डेट 18th of May है. देखना धीरे धीरे हम लोग जून की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और ये साल जो है ये अपना रंग हमें दिखाते हुए जा रहा है. 2025 से लेके 26 तक की हमारी एंट्री बहुत स्पीड में गया ये पूरा पिछला साल, और देखो ये आधा साल भी जा रहा है. जैसे कि ये शो, I am so excited every evening for the show. यहाँ पे जब मैं आती हूँ शो करने के लिए तो मेरी एक्साइटमेंट ना द्विगुणित रहती है. हाँ, आई जस्ट लव माई हिंदी मैनी टाइम्स. द्विगुणित मतलब डबल होती है. एंड यहाँ पे आके आप लोगों के साथ में गपशप, मस्ती, इंटरेक्शंस जो होते हैं, आपके लाइफ के जो किस्से कहानियाँ आप मुझे सुनाते हैं, आप लोगों में से सारे ही जो लिसनर्स हैं जो मोस्टली हमें मैसेज करते हैं हर गीत के बाद, उनकी जो इमोशन आता है, जो फीडबैक आता है, कुछ कहानियाँ आ जाती है, बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के. रेडियो के माध्यम से हम आपके घर के एक मेंबर बन चुके हैं, और आपके सुख दुख सारी चीज़ों में आप हमें अपने साथ लेके चलते हैं. हमेशा की तरह बस इतना ही कहूँगी कि ज़िंदगी जीने के लिए प्यार काफ़ी है, नफ़रत की ज़रूरत नहीं, और पावर वो तो किसी को बर्बाद करने के लिए लगता है. एंड आई एम श्योर कि आप में से कोई भी लोग अपने पावर का यूज़ नहीं करते होंगे. प्यार तो प्यार लो, ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ, सुंदर ज़िंदगी है. अपनी हेल्थ का ख्याल रखो. सेकेंड डे ऑफ द वीक कल मिलेंगे आप और मैं टेरिफिक ट्यूसडे में. तब तक अपना खूब ख्याल रखिए. अब कई लोगों के यहाँ पे तो देखो वहाँ पे टेम्परेचर्स वो बता रहे हैं 30 degrees हो रहा है वहाँ पे कनाडा में. बहुत अच्छी धूप खिलखिला के निकली है. सो बस अब इसी धूप के साथ में मस्ती करिए. हमारे यहाँ साथ में भी टेम्परेचर यहाँ पे अच्छा हो रहा है, और मेरी पड़ोसन आके मेरी तरफ देख रही है. आई हैव टू से गुड बाय, लव यू ऑल, सी यू ऑल टुमारो.
0: ये है Leica Gold.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
0: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Leica Gold.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you.
6: Southall Travel, at all protected.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio. You.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
11: Atif Aslam live in the UK.
10: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
11: Book your tickets now at AXS.
10: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio.
12: પ્રેમ પાસ્ટ અને ફ્યુચર વચ્ચે અટકાયેલું એક દિલ
13: તમને શું લાગે છે હું અહીંયા સાચે વેડિંગ પ્લાન કરવા આવી છું
12: વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી સ્ટારિંગ પૂજા જોશી પરીક્ષિત તામલિયા ભાવિન ભાનુશાલી મિલોની જોન્સા અ ફિલ્મ બાય ધ્વનિ ગૌતમ રિલીઝિંગ ઓન 15th મે
14: આ ફેમિલી વાળી ફિલિંગ ને મેં ત્યાં બહુ મિસ કરી છે
15: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold. Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: This is Leica Gold. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
1: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
1: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हसबंड जी
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
9: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

प्यार दूंगा। अरे हे कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे यार दूंगा, बड़ी मुश्किल से तुझे पाया मेरी जान। अब न कहना के जाती हूँ मैं गली गली, लिए तेरा प्यार दूंगा।

0: अरे जिया राम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नहीं

0: ताली ताकत धुमी ताकत ताली ताकत धुमी ताकत धाला आम को ताकत धुमी ताकत ताली के नज़र ताकत धुमी ताकत नाकत नाकत धुमी ताकत नाकत नाकत धुमी ताकत नाकत नाकत जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के नज़र जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के नज़र जम तारी जग तारी जाने जाने को ताजन
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी जाला जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: The biggest classics throughout the night, non-stop, on Gold Nights. This is Like a Gold.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam, live in the UK.
3: Oh, Julilal Kalandar, mast, mast, da, mast.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड।
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
7: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
8: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
6: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
7: Thanks, playtime's over. Lovely.
9: Feel the fun. Play Ojo.
10: 18 plus gamble aware.
11: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Like Our Radio Sales on 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@lykamedia.co.uk।
2: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ Like Our Gold पर।